ृष्यता धूपमस्रावजामि प्रत्यक्ष नीरांजनम दर्शयामि।

0: घड़ी मिला लीजिए, इस वक्त सुबह के ठीक 5 बजे हैं।
1: आपकी खट्टी मीठी यादों में आपके संग MBC रेडियो

प्रभात आराधना हर सुबह 5 से 6 बजे तक भक्ति के मधुर सुरों में कीजिए ईश्वर की आराधना रेडियो मॉरिशस पर।

0: ईश्वर की आराधना के इन मधुर सुरों के साथ प्रभात आराधना का ये सफर यहीं समाप्त होता है। कल फिर मिलेंगे सुबह 5 बजे भक्ति के नए गीतों के साथ रेडियो मॉरिशस पर।
1: एट हंड्रेड एंड 19 किलोहर्ट्ज़ ये है रेडियो मॉरिशस।

0: वेरी गुड मॉर्निंग आप सभी को, सुप्रभात। घड़ी मिलाते चलिए, सुबह की ठीक 6 बज रहे हैं। समय हो चुका है संक्षिप्त समाचारों का, तो आइए इसे हम आशिता के साथ है सुनते हैं। नमस्कार आपको आशिता।
1: नमस्कार रिया, श्रोताओं को भी नमस्कार। आज 11 अक्टूबर रविवार के प्रातःकालीन पहले संक्षिप्त समाचार में आप सभी लोगों का स्वागत किया जाता है। मॉरिशस में पानी का संकट गहराता जा रहा है। मोहवाक्वा जलाशय में पानी का स्तर 36% से नीचे गिरने के बीच देश पानी की कमी दूर करने के लिए दूसरे देशों के तरीकों पर विचार कर रहा है। पानी की टंकी और पंप खरीदने के लिए 15,000 रुपए की सरकारी सहायता पाने हेतु पंजीकरण सोमवार यानी कि कल 12 अक्टूबर को शुरू होगा। उपनाम के पहले अक्षर के आधार पर पंजीकरण की तारीख तय की गई है, जबकि आवेदन के लिए राष्ट्रीय पहचान पत्र और CWA का बिल प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। मॉरिशस में घरों पर सौर ऊर्जा पैनल लगाने के लिए सरकारी सहायता योजना को लोगों की अच्छी प्रतिक्रिया मिल रही है। अब तक करीब 1,300 आवेदन मिले हैं, जबकि 354 घरों को बिजली नेटवर्क से जोड़ा जा चुका है। मॉरिशस में बिजली की बचत के लिए नया अभियान कुछ दिनों में शुरू होगा और अप्रैल 2027 तक चलेगा। गर्मियों में बिजली की बढ़ती मांग को नियंत्रित करने और बिजली कटौती के खतरे से बचने के लिए लोगों को ऊर्जा बनाने के प्रति जागरूक किया जाएगा। मॉरिशस सोसाइटी ऑफ ऑथर्स माजा की वार्षिक आम सभा रविवार आज यानी कि 11 अक्टूबर को बुबासे में आयोजित हो रही है। इससे पहले 4 अक्टूबर को आवश्यक सदस्यों की संख्या पूरी नहीं होने के कारण सभा स्थगित कर दी गई थी। और आज रविवार 11 अक्टूबर से मॉरिशस में दुर्गोत्सव का शुभारंभ हो रहा है और घरों व मंदिरों में दुर्गा पूजा की विशेष प्रार्थनाएं शुरू हो रही हैं। 9 रातों तक चलने वाली इस पूजा में भक्त मां दुर्गा के 9 रूपों की आराधना करेंगे, जो बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक है। मॉरिशस में सूखे और जलाशयों में पानी का स्तर गिरने के बीच ग्लेनपॉक सुन्नी मस्जिद आज रविवार को बारिश के लिए विशेष प्रार्थना आयोजित करेगी। मोहवाक्वा जलाशय में पानी का स्तर घटकर उसकी कुल क्षमता का 35.7% रह गया है। ऐसे में इमाम ने लोगों से पानी का जिम्मेदारी से इस्तेमाल करने की अपील की है। मॉरिशस में ऑनलाइन टैक्स रिटर्न जमा करने की अंतिम तिथि 15 अक्टूबर हैं और टैक्स पेयरों के पास अब केवल 4 दिन बची हैं। करदाताओं की मदद के लिए मॉरिशस रेवेन्यू अथॉरिटी आज रविवार को सुबह 9 बजे से शाम 4 बजे तक विशेष सेवा उपलब्ध करा रही है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सऊदी अरब की राजधानी रियाद के हवाई अड्डे पर हुए हमले में कम से कम 12 लोगों की मौत और 309 लोग घायल हुए हैं। सऊदी अधिकारियों ने हमले के लिए यमन के हूती विद्रोहियों को जिम्मेदार ठहराया है। तो इसके साथ ये संक्षिप्त समाचार समाप्त हो चला। बढ़ते हैं अब हम मौसम संबंधी

0: जानकारियों की ओर। आम हालत, हमारे इलाके पर हल्की हवाओं का बहाव है। पूर्व से आने वाले बादल सुबह में और दोपहर बाद में हमारे स्थानीय मौसम को प्रभावित करेंगे। अगले 24 घंटों के लिए अनुमान किया जाता है कि सुबह के समय और दोपहर बाद में विशेषकर पूर्व दक्षिण सेट प्रांत पर बादल घिराएंगे और बारिश होगी। कभी कभार बारिश तेज होगी और बादल के गरजने की भी संभावना है। रात के दौरान विशेषकर पूर्व दक्षिण और सेंट्रल प्रांत पर रह रहकर बारिश होती रहेगी। हवा सुबह के समय पूर्व दक्षिण पूर्व की ओर से हल्की बहेगी और दिन में रफ्तार 15 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार होगी। समुद्र प्रवाह रेखा के पास सामान्य रहेगा और दक्षिण पश्चिम की ओर से 2 मीटर की जुआर उठेंगी। तापमान, अधिकतम तापमान सेंट्रल प्लेटो पर 23 से 25 डिग्री सेल्सियस के बीच और तटीय इलाकों पर अधिकतम तापमान 27 से 30 डिग्री सेल्सियस के बीच। न्यूनतम तापमान सेंट्रल प्लेटो पर 16 से 18 डिग्री सेल्सियस के बीच और साहिली इलाकों पर न्यूनतम तापमान 20 से 22 डिग्री सेल्सियस के बीच। चंद जरूरी सलाह, जब बादल गरजे तो जनता को सलाह दी जाती है कि वे सुरक्षित जगह पर रहें और खुली जगहों पर तथा पेड़ों के नीचे न जाएं। आज सूर्योदय सुबह 5:43 पर और सूर्यास्त शाम 6:10 पर।
1: सेंटर 94 नॉर्थ साउथ 95.6 ईस्ट वेस्ट 98.2 98.2 यू आर लिसनिंग योर RM3 रेडियो।

0: खुदा।
1: हज़रत सुहैब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मोमिन का मामला अजीब है, उसका हर मामला उसके लिए खैर ही खैर है, और ये बात मोमिन के अलावा किसी और के लिए नहीं। अगर उसे खुशी और आसूदगी पहुंचती है तो वह अल्लाह ताला का शुक्र अदा करता है और यह उसके लिए खैर बन जाता है, और अगर उसे कोई तकलीफ़ और मुसीबत पहुंचती है तो वो सब्र करता है और ये भी उसके लिए खैर बन जाता है। इस हदीस में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मोमिन की बहुत खूबसूरत तस्वीर बयान फरमाई है। मोमिन खुशी में भी अल्लाह ताला को नहीं भूलता और मुसीबत में भी अल्लाह ताला से मुंह नहीं मोड़ता। खुशी मिले तो शुक्र करता है और तकलीफ़ आए तो सब्र करता है। दुनिया में हर इंसान को कभी खुशी और कभी परेशानी का सामना करना पड़ता है, लेकिन मोमिन का कमाल ये है कि वो दोनों हालतों में अल्लाह ताला से अपना ताल्लुक मजबूत रखता है। सब्र का मतलब ये नहीं कि इंसान तकलीफ़ महसूस न करे, बल्कि सब्र ये है कि तकलीफ़ के बावजूद ज़बान से नाशुक्री न करे, अल्लाह ताला के फ़ैसले पर ईमान रखे और

हज़रत अबू सईद खुदरी और हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मुसलमान को जो थकन, बीमारी, गम, परेशानी, तकलीफ़ या रंज पहुंचता है, हत्ता कि अगर उसे कांटा भी छुप जाए तो अल्लाह ताला उसके ज़रिए उसके बाज़ गुनाहों को माफ़ फरमा देता है। यह हदीस मुसीबत में मुब्तिला शख्स के लिए बहुत बड़ी उम्मीद का पैगाम है। कभी इंसान सोचता है कि मेरे साथ ही इतनी परेशानियां क्यों आ रही हैं, लेकिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमें बताते हैं कि मोमिन की तकलीफ़ भी बेफायदा नहीं जाती। बीमारी, गम, परेशानी और हत्ता के मामूली जिस्मानी तकलीफ़ भी अल्लाह ताला के हाँ अज्र का सबब बन सकती है और गुनाहों की माफ़ी का ज़रिया बन सकती है। इसलिए मोमिन को मुसीबत के वक्त मायूस नहीं होना चाहिए, उसे इलाज भी करना चाहिए, अपनी मुश्किलात दूर करने की कोशिश भी करनी चाहिए और साथ ही साथ अल्लाह ताला से सब्र और अजर की दुआ करनी चाहिए।

मोहतरम सामीन, ज़िंदगी में हर इंसान को आजमाइशों से गुज़रना पड़ता है। कभी बीमारी आती है, कभी माली परेशानी, कभी औलाद की फ़िक्र, कभी रिश्तों के मसाइल और कभी किसी अजीज़ की जुदाई। ऐसे वक्त में हमें घबरा कर अल्लाह ताला से शिकवा नहीं करना चाहिए, बल्कि सब्र, दुआ और तवक्कुल का रास्ता इख्तियार करना चाहिए। याद रखें कि सब्र का मतलब बेबसी नहीं, बल्कि अल्लाह ताला पर मजबूत भरोसा है। अगर आज आप किसी मुश्किल में हैं तो यकीन रखें कि अल्लाह ताला आपकी तकलीफ से बाखबर है। अपनी ज़बान को शिकायत और नाशुक्री से बचाएं, नमाज की पाबंदी करें, दुआ करें और हलाल तरीके से अपनी मुश्किल हल करने की कोशिश करें। मुमकिन है जिस मुसीबत को हम अपने लिए नुकसान समझ रहे हों, वही हमारे गुनाहों की माफ़ी और आखिरत की कामयाबी का सबब बन जाए। सामीन मुख्तरम, सबाल खैर अनकरीब ख़त्म होने वाला है। आइए महफिल के आखिर में रसूल अकदस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में सलाम का नजाना पेश करते हैं। अल्लाह ने चाहा तो समीर आपकी खिदमत में फिर हाजिर होगा। अभी के लिए हमें इजाज़त। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहु।

यह नवरात्र माँ दुर्गा की कृपा आप सभी पर बरसे, आपका जीवन सुखमय एवं सफलताओं से भरपूर रहे। आप सभी को MBC की पूरी टीम की ओर से नवरात्र की पावन मंगल कामनाएं। MBC wishes you all a pious

0: नवरात्रि रात्रि
1: मेरी माँ के बराबर कोई नहीं।
0: भक्ति में शक्ति कार्यक्रम के साथ जुड़े हुए समस्त श्रोताओं को नीतुषा का करजोर प्रणाम। आप सभी को नवरात्रि की मंगल कामनाएं। जी हां श्रोताओं, आज से शारदीय नवरात्रि आरंभ हो रही है और आप सभी को माता रानी की कृपा प्राप्त हो, उनका आशीर्वाद प्राप्त हो, इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आइए इस कार्यक्रम का श्री गणेश करते हैं।

शारदीय नवरात्रि सिर्फ 9 दिनों का एक धार्मिक उत्सव नहीं है, बल्कि ये आत्मा की शुद्धि, मन की पवित्रता और जीवन में सकारात्मक ऊर्जा का संचार करने का एक अनमोल अवसर है। ये वो पवित्र समय है जब हम माँ दुर्गा के 9 दिव्य स्वरूपों की उपासना करते हैं, उनसे शक्ति, साहस, ज्ञान, धैर्य और सद्बुद्धि का आशीर्वाद मांगते हैं। नवरात्रि का अर्थ है 9 रातें, परंतु इन 9 रातों का आध्यात्मिक संदेश बहुत गहरा है। ये हमें याद दिलाते हैं कि जीवन में चाहे कितना भी अंधकार क्यों ना हो, आस्था का एक छोटा सा दीपक भी हमें प्रकाश की ओर ले जा सकता है। माँ दुर्गा की आराधना हमें सिखाती है कि बुराई पर अच्छाई की, अहंकार

शारदीय नवरात्रि का विशेष महत्व है कि इस दौरान भक्त व्रत रखते हैं, पूजा पाठ करते हैं, दुर्गा सप्तशती का पाठ करते हैं और माँ के चरणों में अपनी श्रद्धा अर्पित करते हैं। श्रोताओं, सच्ची भक्ति सिर्फ व्रत रखने या मंदिर जाने तक सीमित नहीं है। सच्ची भक्ति तो वो है जब हम अपने मन से ईर्ष्या, क्रोध, अहंकार और नफरत को दूर करें, जब हम किसी जरूरतमंद की मदद करें, किसी दुखी चेहरे पर मुस्कान लाएं और हर जीवन में ईश्वर का अंश देखें। दुर्गा के नौ स्वरूप नारी शक्ति के नौ दिव्य आयाम हैं। ये हमें बताते हैं कि एक नारी प्रेम भी है, करुणा भी है, ममता भी है, साहस भी है और अन्याय के विरुद्ध खड़े होने की शक्ति भी है। शारदीय नवरात्रि के पहले दिन हम पूजा करते हैं माँ दुर्गा के प्रथम स्वरूप यानी कि माँ शैलपुत्री की।

मान्यता के अनुसार मां शैलपुत्री पर्वतराज हिमालय की पुत्री हैं। उन्हें देवी पार्वती और देवी सती के स्वरूप से भी जोड़ा जाता है। मां शैलपुत्री को सफेद वृषभ यानी बैल पर विराजमान दिखाई जाता है। उनके एक हाथ में त्रिशूल और दूसरे हाथ में कमल का पुष्प होता है। उनका दिव्य स्वरूप शांति, पवित्रता, साहस और प्रकृति के साथ गहरा संबंध का प्रतीक है। मां शैलपुत्री की उपासना हमें जीवन की एक बहुत महत्वपूर्ण सीख देती है कि अगर हमारी नींव मजबूत हो तो जीवन के बड़े से बड़े तूफान भी हमें आसानी से हिला नहीं सकते। जिस तरह एक पर्वत अपनी जगह पर अटल खड़ा रहता है, उसी तरह हमें भी अपने जीवन में अपने सिद्धांतों, सच्चाई और विश्वास पर अटल रहना चाहिए। जीवन में मुश्किलें आएंगी, कभी परिस्थितियां हमारे विरुद्ध होंगी, कभी अपने भी हमें समझ नहीं पाएंगे, परंतु अगर हमारा विश्वास मजबूत है और हमारे कर्म सच्चे हैं तो हम हर कठिनाई का सामना कर सकते हैं।

मां शैलपुत्री का नाम दो शब्दों से मिलकर बना है, शैल अर्थात पर्वत और पुत्री अर्थात बेटी। इस प्रकार शैलपुत्री का अर्थ है पर्वत की पुत्री। पौराणिक

पुत्री का त्रिशूल हमें बुरी प्रवृत्तियों से लड़ने की प्रेरणा देती है, जबकि उनके हाथ का कमल हमें संसार की कठिनाइयों के बीच भी पवित्रता और शांत रहना सिखाता है। कमल कीचड़ में खेलकर भी अपनी सुंदरता और पवित्रता बनाए रखता है। इसी तरह हमें भी जीवन की कठिन परिस्थितियों में अपने मन की अच्छाई को नहीं खोना चाहिए। श्रोताओं, जब माँ शैलपुत्री से प्रार्थना करें तो अवश्य कहे ओम देवी शैलपुत्राय नमः। माँ शैलपुत्री को नमन करने वाला ये पवित्र मंत्र मन को शांति अवश्य पहुंचाएंगे और उनसे प्रार्थना करें कि आप हिमालय की तरह हमें अटल रहना सिखाएं। आपके आशीर्वाद से हमारे जीवन में स्थिरता आए, हमारे विचार पवित्र हो और हमारे कर्म सत्कर्म बने। हे जगत जननी, जब हम कमजोर पड़ जाए तो हमें साहस देना, जब हम निराश हो जाए तो हमारे मन में आशा का दीप जलाना, जब हम भटकने लगे तो हमें सत्य और धर्म का मार्ग दिखाना, हमारे घर परिवार में प्रेम बना रहे, हमारे संबंधों में विश्वास बना रहे और हमारे हृदय में सभी के लिए करुणा और सम्मान बना रहे। आप सभी को शारदीय नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। माँ शैलपुत्री आपके जीवन में सुख शांति समृद्धि अच्छा स्वास्थ्य और अपार कृपा बरसाएं। जय माता दी, प्रणाम।

浮沉世间，情爱是最难解。有种情愫不能相守，却久久难忘。接下来的红颜知己，送给心里藏着一份遗憾的你。

感情里没有绝对的对错，爱恨纠缠万般滋味，只有亲身经历才会懂得。接下来这首《情醉》，道尽情感里的挣扎与心酸。

有些告别便是此生无缘，今生无法相见，只能寄望来世重逢。请听今生不见，来生再见。

0: सभी को नमस्कार अब सुनते हैं आशिता से नमस्कार आपको
1: नमस्कार पूनम संक्षिप्त समाचार में आप सभी लोगों का स्वागत किया जाता है सबसे पहली स्थानीय खबरें गोली लगने से गंभीर रूप से घायल इलुजी तुमा की स्वास्थ्य स्थिति स्थिर बताई जा रही है उनका इलाज कर रही चिकित्सा टीम ने आज सुबह स्वास्थ्य मंत्री के साथ बैठक की इस बैठक में कई सांसद भी मौजूद थे चिकित्सकों की टीम भारत से आने वाले विशेषज्ञ डॉक्टरों के संपर्क में है ये विशेषज्ञ कल दोपहर तक मॉरिशस पहुंचने वाले हैं विशेष डॉक्टरों के पहुंचने के बाद इलुजी तुमा की स्वास्थ्य स्थिति का आकलन किया जाएगा इसके बाद उनके लिए उचित इलाज की प्रक्रिया तय की जाएगी कॉलिव्यू में शुक्रवार शाम गोली लगने से गंभीर रूप से घायल इलुजी तुमा के मामले में घटनाक्रम पर सबकी नजर बनी हुई है काम से घर लौटते समय उन पर गोली चलाई गई थी कल शाम डिप्टी प्राइम मिनिस्टर आर्यन अवामारी और खेल मंत्री तथा निर्वाचन क्षेत्र नंबर 19 के सांसद देवन नागालिंगम उनके परिवार से मुलाकात की करने के लिए गए थे और उनके प्रति एकजुटता तथा समर्थन व्यक्त किया आर्यन अवामारी ने लोगों से शांति बनाए रखने की अपील की उन्होंने कहा कि फिलहाल सबसे बड़ी प्राथमिकता इलुजी तुमा का स्वास्थ्य है उनके अनुसार सरकार इस मामले पर करीब से नजर रख रही है वहीं खेल मंत्री देवन नागालिंगम ने परिवार के सदस्यों से उम्मीद बनाए रखने की अपील की है उन्होंने आश्वासन दिया कि सरकार इस मुश्किल घड़ी में परिवार के साथ खड़ी है और उसे हर संभव सहायता प्रदान करेगी रोड्रिग्स आज सोमवार 12 अक्टूबर रोड्रिग्स कल सोमवार 12 अक्टूबर को अपनी स्वायत्तता के 24 वर्ष मना रहा है इस अवसर पर औपचारिक समारोह कॉन्जुगुआ स्थित जॉन डैनियल उद्री स्टेडियम में आयोजित किया जाएगा ऑनलाइन टैक्स रिटर्न जमा करने की अंतिम तिथि करीब आने के साथ ही टैक्स पेयरों पर दबाव बढ़ रहा है रिटर्न जमा करने की अंतिम समय सीमा इस गुरुवार 15 अक्टूबर की मध्य रात्रि तक है इसके बाद रिटर्न जमा करने पर जुर्माना और

0: ब्याज देना पड़ सकता है. मॉरिशस रेवेन्यू अथॉरिटी यानी MRA के अनुसार 9 अक्टूबर तक 178,000 से अधिक टैक्स रिटर्न जमा किए जा चुके थे. जिन करदाताओं को रिटर्न जमा करने में मदद की जरूरत है उनके लिए MRA रविवार को विशेष सेवा उपलब्ध करा रही है. ये सेवा सुबह 9 बजे से शाम 4 बजे तक जारी रहेगी. और आज रविवार 11 अक्टूबर से मां दुर्गा की आराधना का पर्व दुर्गा पूजा शुरू हो रहा है. 9 रातों तक चलने वाले इस पर्व में श्रद्धालु मां दुर्गा के 9 रूपों की पूजा करते हैं. इनमें शैलपुत्री से लेकर काल रात्रि और सिद्धिदात्री तक के रूप शामिल हैं. हिंदू धर्म ग्रंथों के अनुसार राक्षस महिषासुर का वध करने के लिए सभी देवताओं ने अपनी शक्तियों को एकजुट किया और देवी शक्ति के रूप में मां दुर्गा का प्राकट्य हुआ. मां दुर्गा को बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक माना जाता है. वे नकारात्मक शक्तियों पर विजय पाने वाली दिव्य शक्ति का स्वरूप है. 9 दिनों तक चलने वाली ये दुर्गोत्सव सदियों पुरानी परंपरा का हिस्सा है. इसके अंतर्गत कलश स्थापना सहित विभिन्न धार्मिक अनुष्ठान किए जाएंगे. पूरा वातावरण भक्ति और आध्यात्मिक आस्था से भर जाएगा. आज के प्रथम दिन मां शैलपुत्री की पूजा के साथ दुर्गोत्सव का मंगलारंभ हो रहा है. अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत की राजधानी नई दिल्ली में चुनावी सुधारों की मांग को लेकर प्रदर्शन कर रही कांग्रेस जनता पार्टी के प्रमुख नेताओं को अदालत ने रिहा करने का आदेश दिया है. अभिजीत दीपके समेत नेताओं को शनिवार को हिरासत में लिया गया था. लगातार दूसरे दिन विरोध प्रदर्शनों की आशंका के बीच शहर में सुरक्षा कड़ी कर दी गई है. पार्टी मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की मांग भी कर रही है. हालांकि चुनाव आयोग ने मतदाता सूचियों में हेरफेर के आरोपों से इनकार किया है. और उधर नेपाल में नदी में आई एक दूसरी बाढ़ के बाद अधिकारियों ने आज रविवार को ग्रामीणों से सुरक्षित स्थानों पर जाने की अपील की है. देश के मध्य हिस्से में आई इस बाढ़ में कई घर और बुनियादी ढांचे बह गए हैं. हालांकि अब तक किसी के हताहत होने की खबर नहीं मिली है. अधिकारियों के अनुसार राजधानी काठमांडू से लगभग 100 किलोमीटर पश्चिम में स्थित गोरखा जिले के चुमनुब्री गांव में भूस्खलन के कारण बूढ़ी गंडकी नदी का रास्ता अवरुद्ध हो गया है. इसके चलते नदी का पानी निचले इलाकों में फैल गया और बाढ़ की स्थिति पैदा हो गई है. आपको याद दिला देते हैं कि बूढ़ी गंडकी नदी त्रिशूली नदी की एक सहायक नदी है. इसी नदी तंत्र की एक अन्य सहायक नदी में अगस्त में हिमखंड ढहने से विनाशकारी बाढ़ आई थी. उस आपदा में 1497 लोगों की मौत हुई थी जबकि हजारों लोग अब भी लापता हैं. इसके साथ संक्षिप्त समाचार समाप्त हो चला. आपके ध्यान के धन्यवाद. साथ रहिए, हम बढ़ते हैं शुभ समाचारों की ओर. शुभ समाचार सुनिए. शांति निकेतन रोड ओशनो में 64 साल की 64 ईयर्स ओल्ड की श्रीमती बिदवंती रामदोस पैदाशी नाम रामबख्श और जिन्हें रूपवंती के नाम से लोग ज्यादा जानते थे की मृत्यु हो गई है. उनकी अर्थी कल सुबह 9 बजे उनके बेटे आतिश कुमार रामदोस के घर रोशनो से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए वहीं की शमशान भूमि ले जाएगी. कमीशन टुमोरो एट 9 AM. पुचिकॉन फिनिक्स में 81 साल के 81 ईयर्स ओल्ड के श्री धनंजय गंगाराम की मृत्यु हो गई है. उनकी अर्थी आज शाम 3 बजे उनके घर फिनिक्स से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए वहीं के शमशान भूमि ले जाएगी. क्रिमिशन टिडे एट 3 PM. सिटी सेंटुबे में 79 साल के 79 ईयर्स ओल्ड के श्री गोविंदन रामा जिन्हें राजन होगाय के नाम से भी ज्यादा जानते थे की मृत्यु हो गई है. उनकी अर्थी कल दिन के 2 बजे उनकी पत्नी श्रीमती शोभा रामा के घर सैतुबे से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए खौबुआ की शमशान भूमि ली जाएगी. क्रिमेशन टुमोरो एट 2 PM. शोक में डूबे इन तीनों परिवारों के प्रति हमारी गहरी संवेदना है.
1: Center 95.5, North South 95.6, East West 98.2.
2: You are listening your RM3 Manoranjan Radio. Manoranjan Radio.
3: Your kind of music, all day, all night, right here on your one and only station.

Yeah.

0: खाना सफर, खाना सफर।
1: जय नमस्कार, हेलो जी, गुड आफ्टरनून, आदाब आप सभी को। कैसे हैं आप? उम्मीद है कि आपका रविवार जो है खुशियों, मुस्कुराहटों और खूबसूरत एहसासों से भरा होगा। आज है संडे का दिन, 11th of October, 11 अक्टूबर 2026। दोस्तों, आज का हमारा सुहाना सफर बेहद खास है। मैं हूं देविना, आपके साथ यहां पर और इन फ्री रेडियो मनोरंजन पर अभी से लेकर 3 बजे तक। तो क्या खास होने वाला है? आज की महफिल सजेगी हिंदी सिनेमा के उस महानायक के नाम जिनकी आवाज़ में गूंजता है आत्मविश्वास, जिनकी आंखों में दिखाई देती है अदाकारी की गहराई, जिनके अंदाज ने कई पीढ़ियों को अपना दीवाना बनाया है। जहाँ आज बात हो रही है सदी के महानायक, बॉलीवुड के शहंशाह, बॉलीवुड के पहले डॉन, या कहेंगे कुली, या फिर मर्द तांगे वाला, आप जो भी कहें, बस वो है हमारे अपने प्यारे से अमिताभ बच्चन साहब, जिनको प्यार से कहते हैं बिग बी। और क्या है, आज उनका बर्थडे है। हाँ जी, सो 11 अक्टूबर को उनका बर्थडे पड़ता है। और जब बात हो अमिताभ की, तो उनके पर्दे पर दिखाई देने वाली कई यादगार पलों के साथ एक ऐसी आवाज़ का जिक्र भी ज़रूरी हो जाता है जिसने उनके किरदारों को संगीत के जरिए नहीं पहचान दी। अभी आपने सुना कि पग घुंघरू बांध, हम भी नाचेंगे, आप भी नाचेंगे, ऐसे गानों को सुनकर कौन नहीं नाचेगा। और आवाज़ थी किशोरदा की। और वैसे उनकी जो हम श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे किशोरदा की, जो 13th of October को वे चल बसे थे। सो अमिताभ बच्चन और किशोरदा की पेयरिंग हो और जैसे कहेंगे फन न हो, ये हो नहीं सकता। मगर ऐसी बात नहीं है कि अमिताभ जी के लिए बस किशोरदा ही ने गाना गाया। मगर वैसे कहेंगे शबीर कुमार साहब, मुकेश साहब, मोहम्मद अजीज साहब, इन्होंने सभी ने, और अगर कहेंगे तो 2000 में आते सुनील निगम जी हैं, कुमार सानू भी हैं, उन्होंने बिग बी बच्चन के लिए वो उन्होंने आवाज़ दी। मगर आज खास तौर पर ज़्यादातर जो गाने होंगे किशोरदा की आवाज़ में अमिताभ बच्चन जी पर पिक्चराइज्ड। किशोरदा की वो जादुई आवाज़ थी हमारे अपने सबके चहेते सदाबहार गायक स्वर्गीय किशोर कुमार जी की। एक तरफ अमिताभ बच्चन की बेमिसाल अदाकारी और दूसरी तरफ किशोर कुमार की जादुई आवाज़। जब ये दोनों प्रतिभाएं हिंदी फिल्मों के गीतों में साथ आई, तो संगीत प्रेमियों को मिले ऐसे नगमे जो आज भी दिलों पर राज करते हैं। दोस्तों, आज के इस विशेष कार्यक्रम में हम अमिताभ बच्चन साहब को जन्मदिन की ढेरों शुभकामनाएं देंगे, साथ ही किशोरदा के उन यादगार गीतों को सुनेंगे जो बच्चन साहब पर फिल्माए गए। तो अपनी यादों का पिटारा खोल दीजिए, दिल को संगीत के हवाले कर दीजिए और आवाज़ का वॉल्यूम थोड़ा बढ़ा दीजिए, क्योंकि आज का दिन है महानायक के नाम, सदाबहार संगीत के नाम और उन सुनहरी यादों के नाम जो कभी पुरानी नहीं होती। आप सुन रहे हैं सुहाना सफ़र सिर्फ आर एम फ्री रेडियो मनोरंजन पर। मगर सबसे पहले हम आप सभी को नवरात्रि की ढेर सारी शुभकामनाएं भेज रहे हैं अपनी पूरी टीम की ओर से। और हम जानते हैं जब श्रोता जो है आजकल पूजा में लगे होंगे और आप लोग हमें सुन रहे हैं, तो ये गाना आप सबों के लिए, माँ दुर्गा की कृपा हम सब पर बनी रहे। जय माता दी।

0: सुहाना सफर सुहाना सफर।
1: दोस्तों, जन्मदिन केवल उम्र का एक और साल पूरा होने का नाम नहीं है। जन्मदिन उस सफर को सलाम करने का अवसर है जिसमें किसी इंसान ने अपनी मेहनत, प्रतिभा और लगन से लाखों करोड़ों दिलों में जगह बनाई दी। और अमिताभ बच्चन साहब का फिल्मी सफर भी कुछ ऐसा ही था। कभी संघर्ष, कभी सफलता, कभी असफलता, कभी नई चुनौतियां और कभी शानदार वापसी। उनकी कहानी हमें सिखाती है कि मेहनत और हौसले का साथ हो तो इंसान मुश्किलों के बाद भी अपनी पहचान बनाए रख सकता है। उनकी बुलंद आवाज, दमदार संवाद, अदायगी, गंभीर अभिनय तथा वो उनके जो हास्य से भरे अंदाज ने हिंदी सिनेमा को कई यादगार पल दिए हैं। जैसे कॉमेडी रोल हो या फिर शराबी वाला रोल हो या फिर याराना वाला रोल हो, जो भी रोल उन्होंने निभाए सभी को बहुत अच्छा लगा। और हम बस अपनी पूरी टीम की ओर से और बच्चन साहब के सभी फैंस की ओर से यही प्रार्थना करते हैं कि ईश्वर उन्हें उत्तम स्वास्थ्य, सुख, शांति और लंबी उम्र प्रदान करे, उनके जीवन में खुशियाँ की बहार बनी रहे और उनकी कला आने वाली पीढ़ियों को प्रेरित करती रहे। जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं अमिताभ बच्चन साहब को। और साथ में आप लोग जो हमारे दोस्त आप अपना जन्मदिन मना रहे हैं तो बस हमारी पूरी टीम की ओर से, हमारे दिल से आपको बेस्ट विशेस। तो ये गाना आप सबों के लिए, आप और हम हमेशा इसी दोस्ती को निभाते रहेंगे। ये गाना आपके लिए।

0: सुहाना सफर, सुहाना सफर।
1: जी दोस्तों, जब बात हो अमिताभ बच्चन के मस्त मौला अंदाज की, तो इस गीत को कैसे भुलाया जा सकता है। किशोर दा की आवाज में मैं हूं डॉन। फिल्म डॉन में अमिताभ बच्चन का स्वैग, उनका डांस और चेहरे के हाव भाव सब कुछ इस गीत को बेहद खास बनाते हैं। और किशोर दा की आवाज, ऐसी मस्ती, ऐसा रंग, ऐसा अंदाज कि सुनने वाला भी झूम उठे। यह गीत आज भी महफिल में बज जाए तो पैरों को थिरकने से रोकना मुश्किल हो जाता है। तो प्यारे दोस्तों, तैयार हो जाए अब एक और एक ऐसा गाना किशोर दा की आवाज़ में, ये भी आपको झूमने पर मजबूर कर देगा। फिल्म है याराना।

ऊपर वाला मर्द टांगे वाला, मैं हूँ मर्द टांगे वाला। मुझे दुश्मन क्या मारेगा, मेरा दोस्त

क्यों भाई बादल क्यों भाई मोती, मैं सच कहता हूँ मर्द टांगे वाला, मैं हूँ मर्द टांगे वाला। तुझे दुश्मन क्या मारेगा,

जहाँ दोस्तों आप जुड़े हुए हैं और एम फ्री रेडियो मनोरंजन के साथ, और आज है स्पेशल बिग बी बच्चन साहब पर पिक्चराइज गाने और साथ में खास तौर पर किशोर दा की आवाज़ में। और अब जो अगला गाना आप सुनने वाले हैं फ्रॉम द मूवी कालिया, और हमारे साथ जुड़ी हुई है मौद अरबिया से हमेशा की तरह हमारी प्यारी सी अनिता जी। और अनिता जी सबको कह रही हैं जय माता दी, सभी भक्तों को नवरात्रि की शुभकामना भेज रही है। थैंक यू अनिता जी आपको भी, और करुणा के लिए अमृता कविता, और सभी दोस्तों के लिए फिल्म कालिया का ये गाना आप सबों के लिए। एंजॉय इट, आप जुड़े हैं सुहाना सफर प्रोग्राम के साथ।

जो दोस्तों आपको बता देते हैं कि आज हमारा जो फ़ोन है अभी के लिए वो इसमें कुछ प्रॉब्लम आ रही है. सो अगर आप कुछ डेडिकेशंस करना चाहेंगे या कुछ रिक्वेस्ट तो 5250-6200 पर आप मैसेजेस भेजिएगा, क्योंकि हमारा जो फ़ोन है अभी के लिए उसमें ख़राबी आई हुई है. सो फॉर मैसेजेस 5250-6200.

जाया गाना मिले जाएगा एक बजे के समाचार की ओर. हम आपको बता देते हैं फोन में खराबी है आज अभी के लिए, सो सॉरी. सो मैसेज के लिए ऑन 5250-6200-5250-6200-5250-6200 पर अपने मैसेजेस भेजिएगा. और ये गाना जो है

जहाँ फिल्म शक्ति का गाना है। ज्ञान बिहारी जी नमस्कार, और आप कह रहे हैं हैप्पी नवरात्रि टू यू एंड थैंक यू, और ऑल आवर इंफिनिटी लिसनर्स, मे ब्लेसिंग्स ऑफ दुर्गा मां ब्रिंग हैप्पीनेस एंड प्रॉस्पेरस प्रॉस्पेरिटी टू ऑल। थैंक यू सो मच आपको भी, और कह रहे हैं टुडे बिग बी बच्चन साहब का बर्थडे है, सो ये गाना आपके लिए, वाइफ सबिता के लिए, सिस्टर इन लॉ गीता, संजीव, सुनील, रानी, शीतल और सभी लिसनर्स के लिए।

0: सभी को नमस्कार। अब सुनते हैं विधिमा से संक्षिप्त समाचार। विधिमा आपको नमस्कार।
1: नमस्कार पूनम, सभी सुनने वालों को नमस्कार। इरुजी टोमास की स्वास्थ्य स्थिति स्थिर बताई जा रही है। उनका इलाज कर रही मेडिकल टीम ने आज सुबह स्वास्थ्य मंत्री के साथ एक बैठक की, जिसमें कई सांसद भी उपस्थित थे। डॉक्टरों की टीम भारतीय विशेषज्ञों के लगातार संपर्क में है, जिनके कल दोपहर तक देश पहुंचने की उम्मीद है। उनके आगमन के बाद मरीज की स्थिति का मूल्यांकन किया जाएगा, जिसके बाद उचित मेडिकल प्रोटोकॉल पर फैसला लिया जाएगा। कल शाम टोमास परिवार से उप प्रधानमंत्री और युवा एवं खेल मंत्री ने मुलाकात की। दिव्या नगालिंगम ने आश्वासन दिया है कि एलओजी टोमास की स्वास्थ्य स्थिति को बेहतर बनाए रखने के लिए हर संभव प्रयास किया जा रहा है। वहीं आर्या नवामाही ने उस घटना के गवाहों से आगे आने की अपील की है, जिसमें ये युवा मां घायल हुई थी। उन्होंने कहा कि उनकी सुरक्षा सुनिश्चित की जाएगी। और इस घटना ने राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का ध्यान भी आकर्षित किया है, जिसने न्यायिक जांच की मांग की है। मानवाधिकार डिवीजन के सदस्य जॉन-मारी रिशॉ ने याद दिलाया कि हथियारों का इस्तेमाल हमेशा अंतिम विकल्प होना चाहिए। पानी का संकट चिंता का मुख्य केंद्र बना हुआ है। मऊवा का जलाशय के 36% से नीचे चले जाने और भारी बारिश आने में लगभग 2 महीने बाकी होने के कारण मॉरिशस को इस सूखे से निपटने के लिए समाधान तलाशने होंगे। लंबी अवधि के समाधानों के इंतजार के बीच परिवार पानी की कटौती से बेहतर तरीके से निपटने के लिए वित्तीय सहायता का लाभ उठा सकेंगे। पानी की टंकी और पंप खरीदने के लिए ₹15,000 की सब्सिडी के वास्ते पंजीकरण इस सोमवार 12 अक्टूबर से शुरू हो रहे हैं। ये कैलेंडर सरनेम के पहले अक्षर के अनुसार तय किया गया है। जिन लोगों का नाम ए से एम अक्षर से शुरू होता है, वे सोमवार से बुधवार तक पंजीकरण करा सकेंगे। जिनका नाम एन से जेड अक्षर से शुरू होता है, वे गुरुवार से शुक्रवार तक ऐसा कर सकेंगे। पंजीकरण सुबह 9 बजे से दोपहर 3 बजे तक सैंपल में CWA के मुख्य कार्यालय या देश भर में इसके विभिन्न कार्यालयों में किए जाएंगे। इसके लिए नेशनल आइडेंटिटी कार्ड और CWA का एक बिल दिखाना होगा। आज रविवार 11 अक्टूबर से नवरात्रि शुरू हो रही है, जो देवी दुर्गा के 9 रूपों को समर्पित है। 9 रातों तक चलने वाला ये भक्ति का समय प्रार्थनाओं और धार्मिक अनुष्ठानों से भरा होता है, जो बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक है। उत्सव की शुरुआत आज देवी शैलपुत्री की पूजा अर्चना के साथ हो रही है। ये आध्यात्मिक

0: आस्था और सदियों पुरानी परंपराओं का पर्व है जिसका समापन आगामी 20 अक्टूबर को विजयादशमी के साथ होगा। ऑनलाइन टैक्स रिटर्न जमा करने की अंतिम तिथि में चार दिन बाकी होने के कारण करदाताओं पर दबाव बढ़ गया है। इसकी समय सीमा इस गुरुवार 15 अक्टूबर की आधी रात तय की गई है जिसके बाद जुर्माना और ब्याज देना पड़ सकता है। ज्ञात हो कि शुक्रवार 9 अक्टूबर तक 178,000 से अधिक टैक्स रिटर्न पहले ही दर्ज किए जा चुके हैं। जिन्हें मदद की आवश्यकता है उनका सहयोग करने के लिए मॉरिशस रेवेन्यू अथॉरिटी आज रविवार को शाम 4 बजे तक विशेष रूप से खुला रहेगा। और विदेश में सऊदी अरब के रियाद में किंग खालिद इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर शनिवार को हुए हमले में कम से कम 12 लोग मारे गए और 300 से अधिक घायल हो गए। यमन के हुती विद्रोहियों ने सभी एयरलाइन कंपनियों को सऊदी हवाई अड्डों का उपयोग न करने की नई चेतावनी जारी की है। तो इन्हीं खबरों के साथ ही संक्षिप्त समाचार समाप्त हुई। थोड़ी देर में शोक समाचार। पिट्सी कॉम फिनिक्स में 81 साल के 81 years old के श्री धनंजय गंगाराम की मृत्यु हो गई है। उनके अर्थी आज दोपहर 3 बजे उनके घर पिट्सी कॉम फिनिक्स से उठाकर फिनिक्स की शमशान भूमि दी जाएगी। क्रिमिशन टुडे एट 3 PM। सुखदेव बिसुंदयाल स्ट्रीट नोवेल फॉन्स में इक्यासी साल की 81 years old की श्रीमती नारायणी सुचित जो चंद्रावती नाम से भी जानी जाती थी की मृत्यु हो गई है। उनके अर्थी आज दोपहर 3 बजे उनके घर सुखदेव बिसुंदयाल स्ट्रीट नोवेल फॉन्स से उठाकर मारी जानी रोजबेल की शमशान भूमि दी जाएगी। क्रोमिशन टुडे एट 3 PM। शोक में डूबे इन परिवारों के प्रति हमारी संवेदना है।
1: चौरानवे 95.6 98.2 आप सुन रहे हैं RM3
2: La MBC se réinvente et vous accompagne désormais partout. Retrouvez toute la richesse des contenus de la MBC sur nos nouvelles plateformes digitales. Avec MBC Now, notre nouvelle page Facebook, restez connectés à l'actualité, découvrez les temps forts de nos émissions et ne manquez aucune nouveauté. Avec l'application mobile MBC Play ainsi que notre nouveau site web mbc.mu, regardez vos chaînes TV en direct, écoutez vos radios préférées en live, suivez le JT, les courses hippiques, consultez la programmation et profitez du replay où que vous soyez, à la maison, au bureau ou en déplacement, la MBC est désormais accessible sur votre téléphone, votre tablette, votre ordinateur ou votre Smart TV. MBC Now, MBC Play, mbc.mu, toute la MBC partout avec vous. Plus d'infos sur le 402 8000.

जो हो चुका है यहाँ पर 1:10 और आज है संडे का दिन 11 अक्टूबर और बैक टू द सेकंड आवर ऑफ सुहाना सफर प्रोग्राम। मैं हूँ देविना आप सबों के साथ और 12 बजे से हम आपके लिए बजा रहे हैं बिग बी बच्चन साहब पिक्चराइज गाने साथ में किशोर दा की आवाज़। और अभी आपने सुना अमिताभ बच्चन साहब की आवाज़ में, खुद की आवाज़ में ओके के पाने बनारस वाला। ये गाना कितना मशहूर हुआ था, आज भी मशहूर है। जो दोस्तों अगर अब बात करें शराबी मूवी का, 1984 की मूवी और गायक कलाकार किशोर दा, तो बात करते हैं ऐसे गीत की जिसमें जिंदगी की सच्चाई है, दिल का दर्द है और अपने रास्ते पर आगे बढ़ते रहने का संदेश। फिल्म शराबी में बच्चन साहब ने विक्की कपूर का किरदार निभाया था। उनकी अदाकारी और किशोर कुमार की आवाज़ ने इस फिल्म के संगीत को खास पहचान दी। मंजिलें अपनी जगह हैं, रास्ते अपनी जगह, इस गीत का भाव हमें याद दिलाता है कि जिंदगी में हर किसी का अपना सफ़र होता है। कभी रास्ते आसान होते हैं, कभी मुश्किल। तो बस इस गाने को एंजॉय करते हैं आप सबों के नाम ऑन आर एम फ्री रेडियो मनोरंजन।

हाँ जी, हमारा फोन अब ठीक हो गया है और इतने फोन आ रहे हैं कि क्या कहें। आपके फोन हम देख रहे हैं, कितने लोग फोन कर रहे हैं एक करके एक। हाँ, वन बाय वन हम लेंगे आपके लिए। बस अभी के लिए ये जो गाना है, एक ये जाएगा खास तौर पर ज्योति अवशा तो बिना गैस, वो गाना है आशनी रेखा सुरेखा और माधव फैमिली के लिए। ब्यूटीफुल मैसेज आया है, आउटस्टैंडिंग शो, थैंक यू सो मच। शुभ नवरात्रि टू द आरएमपी क्रू, थैंक यू सो मच, कीप शाइनिंग, दिल से शुक्रिया। और मूवी है महान का गाना, ये गाना आपके लिए, प्यार में दिल पे मार दे गोरी। ये है फ्रॉम डारेन, श्वेता, रविश, प्रिशा, लविशा एंड आपादू फैमिली।

जहाँ बैक टू सुहाना सफर प्रोग्राम और जो गाने हैं लोगों को बहुत अच्छा लग रहा है और फ़ोन भी अच्छा हो गया और आपके फ़ोन हम ले रहे हैं, आपके मैसेजेस हम पढ़ रहे हैं और धीरे धीरे सबकी हम फरमाइशें जो हैं जब तक हो सके पूरी करेंगे, नहीं तो आप जानती हैं सभी के जो गाने हैं आप लोगों के लिए ही है। और अब आज है बिग्बी बच्चन साहब का बर्थडे, तो कल था 10 अक्टूबर को उनकी जो सबसे फेवरेट हीरोइन थी जिनके साथ उनकी जोड़ी लोगों को पसंद आ रही आई थी, आपको पता है इशारा आपने समझ दिया, वो है रेखा। जी हाँ, तो रेखा भानु रेखा गणेशन और सिलसिला मूवी हो, राम बलराम मूवी हो, मुकद्दर का सिकंदर हो, इसमें लोगों ने उनको बहुत पसंद किया इन दोनों को, मिस्टर नटवरलाल में परदेसिया ये सच है पे ये सब। तो बस अभी के लिए हम एक गाना बजाने वाले हैं, ये जो गाना है काफ़ी दिनों तक नहीं बजा नहीं सुना है और फिल्म है राम बलराम किशोरदा की आवाज़ में, साथ में है आशा जी और हमारे जो नवीन भाई हैं मोहताई ब्लॉन्च के, हेलो जी, तो वे ठहरे आशा जी के ज़बरदस्त फ़ान, तो सभी गाने जो वे मांगते हैं अच्छे होते हैं, बढ़िया होते हैं, साथ में आशा जी की आवाज़ ही होती है। तो नवीन जी ये गाना आपके लिए, एंड विश यू हैप्पी संडे, और आपको जो गाने हैं अच्छे लग रहे हैं ये गाना आपके लिए खास तौर पर।

जहाँ वो मुकद्दर का सिकंदर जान यमन कहला रहेगा, रोते हुए आते हैं सब और जब जाएंगे हंसते हुए जाएंगे। तो बस ये गाना खास तौर पर ये था मनोज सोहन जी के लिए फ्रॉम रिस्पॉन्स ट्रिब्यूशन। एक्चुअली मनोज जी कहेंगे आपको बिलेटेड हैप्पी बर्थडे, आपका बर्थडे था ऑन द 4th of October। और वैसे जो आने वाला ट्यूसडे है ना, मंगलवार को जो 13th of October है, आपकी वाइफ नजीमा का बर्थडे है। तो इन एडवांस नजीमा जी, प्यारी सी नजीमा जी, आपको कहेंगे हमारी पूरी टीम की ओर से दिल से आपको भेजते हैं ढेर सारी शुभकामनाएं। हैप्पी बर्थडे टू यू नजीमा जी। तो ये गाना वाज ऑन बिहाफ ऑफ मनीष जी टू नजीमा जी। और ये गाना स्पेशली फॉर द ऑल द रेजिडेंट्स ऑफ गया सिंह आश्रम, जितने लोग परिवार हैं, जो बीमार हैं, वो दुखी हैं, अकेले हैं, ये सब आपके लिए ऑन स्पेशली फ्रॉम मनोज जी। मुकद्दर का सिकंदर और हमारे परिवार के लिए भी थैंक यू, और पूरी टीम के लिए थैंक यू सो मच। अब अगला गाना जो है ये जाएगा स्पेशली, शामिल करते हैं इसमें नाम बाबू अनाटवा जी आपके लिए। याराना मूवी का गाना है और कह रहे हैं कि आजकल तो पानी की समस्या हो रही है, अगर आप लोग पानी का इस्तेमाल कर रहे हैं, प्रयोग कर रहे हैं, हम जानते हैं आजकल तो पूजा पाठ हो रही है, मगर जितने जो पानी है सोच समझ कर आप वो व्यर्थ मत कीजिएगा। जितने लोग आप लोग ऐसे ही पानी का इस्तेमाल मत कीजिएगा, जब बहुत ज़रूरत होगी तब भी। तो बाबा नटवा जी की पूरे आपके परिवार के लिए ये गाना, और जितने लोग पूजा पाठ में लगे हुए हैं, हमारे परिवार हैं, हमारी जो

विमला जी हैं, श्यामा पुप्पू जो हैं शुमें घोयें से, करुणा है और साथ में जितने दोस्त हैं हमसे जुड़े हुए हैं अभी और एम फ्रीडम मनोरंजन से, आपके लिए ये गाना।

जहाँ आप लोग मजे ले रहे हैं, आप एंजॉय कर रहे हैं अमिताभ बच्चन साहब पर पिक्चराइज गाने, और आज उनका बर्थडे है। और वो ऐसे हस्ती हैं जिन्होंने सालों साल सदियों तक लोगों के मन में अपनी जगह बनाई है, और आज तक उनकी जगह जो है वहीं पर है, लोग उनको पसंद करते हैं। कितने लोग, करोड़ों लोग उनके घर के आगे होते हैं उनकी एक झलक के लिए। और अमिताभ बच्चन साहब जो हैं वो इतने हम्बल पर्सन हैं कि हमेशा हर किसी को हेलो कहते हैं, हर किसी की मदद करते हैं। बस ऐसे ही वे हमें जैसे एंटरटेन करते रहे, और अब भी वे फिल्मों में आते हैं तो उनकी जो एंट्री है ज़बरदस्त होती रहती है। अगला गाना जो है फ्रॉम द मूवी अभिमान, उनकी जो वाइफ जया भादुरी के साथ, जया बच्चन एक्चुअली, और अभिमान मूवी के सभी गाने बेमिसाल रहे, ज़बरदस्त है। और इसी फिल्म का गाना कटरबोन से प्रेमिला जी ने मांगी है। प्रेमिला जी हेलो, आप काम कर रही है, काम काज में लगी हुई है, फिर भी हमारा साथ दे रही है, थैंक यू सो मच दिल से। और वे कह रही है प्रोग्राम मस्त है, बढ़िया है, थैंक यू सो मच। और सभी बीसी सौ फैमिली के लिए ये गाना। और

खासतौर पर लव और कुश के लिए, ऑल्सो उनकी जो विद्या है प्रवेश, प्रकाश, वंदना, सभी बीसी सौ फैमिली और प्रेमिला जी सभी को शुभकामनाएं दे रही हैं नवरात्रि की, और वे कह रही हैं माँ सबका कल्याण करें। और ये गाना जाएगा ऑल्सो गाँव गोप की विमला जी, आप भी कामकाज में लगी हुई हैं, आप भी शुभकामनाएं भेज रही हैं नवरात्रि की और आप तैयारी में लगे हुई हैं पूजा की। सो बस ये गाना आप के लिए भी, सो बस गाते सुनते सुनते आप काम कीजिएगा, मज़ा आ जाएगा।

सूर्यवंशम इस फिल्म में नज़र आए थे बच्चन साहब और इस फिल्म के गाने काफ़ी लाजवाब थे और ये जो गाना है पीपल के पटुआ पर, हाँ ये गाना खास तौर पर श्यामा रघुनंदन जी आप कौन कब उनको ये गाना बेहद ही पसंद है। सुनील निकम साहब की आवाज़ में साथ में जसपिंदर नरोला। श्यामा जी ये गाना खास तौर आप पर आपके लिए, भाभी नम्रता के लिए। भाई साहब हैं जयप्रकाश, केशव युदेश, सहेलियां हैं विना रामफोल, विश्वानी दुखी, नंदिनी रोकलू और साथ में जितने लोग हमारा साथ दे रहे हैं, बस ये गाना आप एंजॉय कीजिएगा।

जहां 2:55 हुए हैं और आपको बता देते हैं कि अब 12 बजे से अभी तक हम चला रहे हैं, सेलिब्रेट कर रहे हैं बिग बी बच्चन साहब के साथ, उनके फैंस के साथ, और 2 बजे के बाद हम चलाने वाले हैं उदित नारायण साहब पर की आवाज़ में गाने। और अभी के लिए फ़िलहाल हम बजाने वाले हैं एक अंतिम गाना समाचार से पहले। और आज है संडे 11th ऑफ अक्टूबर, बिग बी बच्चन साहब का बर्थडे। साथ में हमारे जो शहनशाह हैं एमबीसी के, हमारे जो रोशन भाई हैं, उनको हैप्पी बर्थडे कहेंगे। हैप्पी बर्थडे टू यू रोशन भाई। सो बस हमारी पूरी टीम की ओर से आपको जन्मदिन की ढेर सारी शुभकामनाएं। हमारी ओर से भी आपको कहेंगे लॉट्स ऑफ लव, हेल्थ, वेल्थ, आपको जो भी चाहिए ज़िंदगी में आपको मिले। तो आप भी हमें सुन रहे हैं और आप भी एंजॉय कर रहे हैं इस शो को, और आप कह रहे हैं सदी के महानायक श्री अमिताभ बच्चन जी और जन्मदिवस के अवसर पर ढेर सारी शुभकामनाएं आप भेज रहे हैं, आपको भी प्रस्तुत कर रहे हैं। संयोग से आपका भी जन्मदिन है, हाँ जी। सो बस आपके ये गाना और साथ में आपकी पत्नी के लिए भी, मनीषा है, बेटे जयशल, रिशल के लिए भी, और रोशन जी आप ऐसे ही हमें एंटरटेन करते रहें, हमारा साथ देते रहें, हमेशा आप मुस्कुराते रहें हमारे साथ, आपके डेडिकेशन के लिए, आपके मोटिवेशन के लिए दिल से धन्यवाद। सो हमारी पूरी टीम की ओर से, हमारे सभी लिसनर्स के लिए की ओर से आपके लिए ढेर सारी शुभकामनाएं हैं रोशन भाई। तो ये अगला गाना आपके लिए, साथ में जितने लोग हमसे जुड़े हुए हैं और आपके गाने हम नहीं चला पाए, सो बस ये गाना, इसमें आपका नाम जोड़ते हैं रिव्या जीपोस की वीना जी, ये गाना आपके लिए। साथ में एक और मैसेज आया है, देखते हैं यहाँ पर, हाँ जी। तो हाँ, अनीता जी फिकॉन फ्लैक्स से हैं, आप मांग रही हैं दुर्गा माँ की के ऊपर एक गाना। सो बस आपको बता देते हैं कि भक्ति गीत चलते हैं, भक्ति प्रोग्राम्स हैं यहाँ पर जो चलता है रात को, वहाँ पर भी बहुत सारे अच्छे अच्छे भजन हैं, मगर फिर भी एक गाना चलाएंगे आपके लिए अनीता जी। और फिकॉन फ्लैक्स से है, आप सभी को कह रही हैं मंगल कामनाएं भेज रही हैं। और साथ में है, नमस्ते, आपको सुन रहे हैं, शो इज़ नाउ ग्लोइंग, थैंक यू सो मच। और ये गाना हम नहीं चला पाएंगे जो आपने मांगा, मगर फिर भी विजय जी, विजय हमारे शुभ चिंतक हैं, थैंक यू सो मच, ये गाना आपके लिए भी अगला गाना। ओ हाँ जी, तो बस चले चले फिर चली चली, वंस अगेन अमिताभ बच्चन साहब को हैप्पी बर्थडे, साथ में रोशन भाई आपको भी हैप्पी बर्थडे।

0: सुनते हैं संक्षिप्त समाचार विधिमा के साथ। आपको नमस्कार विधिमा।
1: नमस्कार हंसिनी, सभी सुनने वालों को नमस्कार। इलुजीटोमा की स्वास्थ्य स्थिति स्थिर बताई जा रही है। उनका इलाज कर रही मेडिकल टीम ने आज सुबह स्वास्थ्य मंत्री के साथ एक बैठक की, जिसमें कई सांसद भी उपस्थित थे। डॉक्टरों की टीम भारतीय विशेषज्ञों के लगातार संपर्क में है, जिनके कल दोपहर तक देश पहुंचने की उम्मीद है। उनके आगमन के बाद मरीज की स्थिति का मूल्यांकन किया जाएगा, जिसके बाद उचित मेडिकल प्रोटोकॉल पर फैसला लिया जाएगा। इस घटना ने राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का ध्यान आकर्षित किया है, जिसने न्यायिक जांच की मांग की है। मानवाधिकार डिवीजन के सदस्य जोमारी रिशो ने याद दिलाया कि हथियारों का इस्तेमाल हमेशा अंतिम विकल्प होना चाहिए। आज रविवार को शारदीय नवरात्रि शुरू हो रही है, जो देवी दुर्गा के नौ रूपों को समर्पित है। नौ रातों तक चलने वाला ये भक्ति का समय प्रार्थनाओं और धार्मिक अनुष्ठानों से भरा होता है, जो बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक है। ये आध्यात्मिक आस्था और सदियों पुरानी परंपराओं का पर्व है, जिसका समापन आगामी 20 अक्टूबर को विजयादशमी के साथ होगा। ऑनलाइन टैक्स रिटर्न जमा करने की अंतिम तिथि में 4 दिन बाकी होने के कारण करदाताओं पर दबाव बढ़ गया है। इसकी समय सीमा इस गुरुवार 15 अक्टूबर की आधी रात तय की गई है, जिसके बाद जुर्माना और ब्याज देना पड़ सकता है। ज्ञात हो कि शुक्रवार 9 अक्टूबर तक 178,000 से अधिक टैक्स रिटर्न पहले ही दर्ज किए जा चुके हैं। जिन्हें मदद की आवश्यकता है, उनका सहयोग करने के लिए मॉरिशस रेवेन्यू अथॉरिटी आज रविवार को शाम 4 बजे तक विशेष रूप से खुली रहेगी। और विदेश में तूफान इसाइयास की तेज हवाओं और भारी बारिश से अमेरिका के दक्षिणी हिस्सों में भारी तबाही मची है, जिसमें 4 लोगों की मौत हो गई और लाखों लोग बिजली न होने के कारण अंधेरे में हैं। तो इन्हीं खबरों के साथ ही संक्षिप्त समाचार समाप्त हुए। थोड़ी देर में शोक समाचार। सुखदेव बिसुंदयाल स्ट्रीट नोवेल फ्रांस में 81 साल की 81 years old की श्रीमती नारायणी सुचित, जो चंद्रावती नाम से भी जानी जाती थी, की मृत्यु हो गई है। उनके अर्थी आज सुबह 3 बजे उनके घर सुखदेव बिसुंदयाल स्ट्रीट नोवेल फ्रांस से उठाकर मारीजानी रोजबेल की शमशान भूमि दी जाएगी। क्रिमिशन टुडे एट 3 PM। पेटिकॉन फिनिक्स में 81 साल के 81 years old के श्री धनंजय गंगाराम की मृत्यु हो गई है। उनके अर्थी आज सुबह 3 बजे उनके घर पेटिकॉन फिनिक्स से

0: उठाकर फिनिक्स की शमशान भूमि दी जाए जाएगी। क्रिमिशन टुडे एट 3 पीएम। शोक में डूबे इन परिवारों के प्रति हमारी संवेदना है।
1: चौरानवे 95.6 98.2 आप सुन रहे हैं RM3।

0: जी हाँ, वेलकम बैक टू दर्शक थर्ड आवर ऑफ सुहाना सफर प्रोग्राम। 2 बजे के बाद, समाचार के बाद 2:05 हो चुके हैं और हम साथ दे रहे हैं आपका 12 बजे से, और 3 बजे तक हमारा और आपका साथ रहेगा। और अब हम सुनने वाले हैं, आपके सुनाने वाले हैं उदित नारायण साहब की आवाज़ में कुछ प्यारे प्यारे गाने, और आपके इस संडे आफ्टरनून को और शानदार बनाने के लिए और रोमांटिक बनाने के लिए। साथ में आप जितने लोग अभी के लिए घर के कामकाज में लगे हुए हैं और साथ में कहीं कुछ शॉपिंग कर रहे हैं या फिर आराम कर रहे हैं, मगर आप, हम जानते हैं बहुत से लोग बिजी होंगे आज, बस आप जहाँ भी हो, एंजॉय लाइफ, एंजॉय द गुड ब्यूटीफुल सॉन्ग्स हमारे साथ और एम फ्री रेडियो मनोरंजन पर। ये गाना साजिद जी आपके लिए फ्रॉम रोजिल, आपके प्यारे से दोस्त सरोवर के लिए कनाडा से है।
1: और इसीलिए दोस्तों मैंने फैसला किया कि फिर कभी किसी से प्यार नहीं करूंगा, कभी किसी लड़की को अपना दिल नहीं दूंगा,

चलिए सभी लोग भक्तिमय वातावरण में जुड़े हुए हैं, सब लोग पूजा पाठ में लगे हुए हैं, स्टिल आप लोग कनेक्टेड हैं हमसे और एम फ्री रेडियो मनोरंजन से, थैंक यू सो मच। और जब माँ ने माँ का विश्वास हो मन में तो कठिन रास्ते भी आसान लगने लगते हैं। जब हृदय में माँ की भक्ति हो तो निराशा में भी आशा की किरण दिखाई देती है। आइए इस पावन जो संध्या में है ना, माँ जगदम्बा उनके चरणों में श्रद्धा की दीप जलाएं और मिलकर बोले जय माता दी। आप सभी श्रोताओं को, आप मॉरिशस में हो या आउट ऑफ मॉरिशस, आपकी पूजा सफल हो, श्रद्धा भाव से आप पूजा कीजिएगा। पूजा का मतलब ये नहीं है कि आप मंदिर सिर्फ मंदिर जाएं या सिर्फ बैठे रहें माँ के सामने, मगर मन में शुद्धता होनी चाहिए, मन साफ होना चाहिए। हमेशा किसी हमेशा लोगों की भलाई के बारे में सोचें, किसी का बुरा मत करें, बस यही सच्ची पूजा है। सो ये गाना आप सभी भक्तों के लिए, और इस कार्यक्रम में आप सब लोग भाग ले रहे हैं। इसके बाद हमारा जो प्रोग्राम है उदित नारायण साहब पर, ये गाने आप हम चलाएंगे अभी के लिए जुबिन नौटियाल की आवाज़।

या दोस्तों 90s का दशक सिर्फ एक दौर नहीं था, वो एक एहसास था। वो कैसेट रिकॉर्डिंग करने का ज़माना था, पसंदीदा गाने को बार बार सुनने का ज़माना था और किसी खास गीत को सुनकर चुपके से मुस्कुराने का ज़माना था। और जब बात उदित नारायण की हो तो रोमांस का जिक्र होना तो बनता ही है। उनकी आवाज़ में वो बात थी, वो कशिश थी कि हीरो पर्दे पर मुस्कुराता था लेकिन दिल में हलचल श्रोताओं के मच जाती थी। कभी वो प्यार का इजहार करते, कभी अपने महबूब को मनाते और कभी ऐसी धुन छेड़ते कि दिल कह उठता वाह, बस वही गीत बजता रहे। वो जो रोमांटिक हीरो थे ना, जैसे ऐसा लगता था कि उनकी आवाज़ ही है, मगर ये जो आवाज़ थी उदित नारायण की, वो क्या कहें, जैसे मिलता जुलता जो मिलते जी तो आवाज़, जैसे कहेंगे आमिर खान की हो। और आमिर खान की पहली मूवी कयामत से कयामत तक, वो याद है आपको ना कि गाने कितने मशहूर हुए थे, दिल। और अगर हम बात करें अब अक्षय कुमार की, तो फिल्म दीदार का वो गीत आपको याद है ना, तो बस ये गाना आप सबों के लिए।

हमारे दोस्त हमसे बातें कर रहे हैं अब तक मैसेजेस भेज रहे हैं थैंक यू सो मच टू बी कनेक्टेड और वैसे तो हमारी और आपकी दोस्ती तो कायम है हर संडे को आते हैं यहाँ पर 12 बजे से 3 बजे तक और आपका प्यारा साथ रहता है और आपकी जो अफ्टरनून है ना उसको मज़ेदार बनाते हैं रोमांटिक बनाते हैं और बस आपके साथ शेयर करते हैं इतने प्यारे प्यारे गाने और जो अगला गाना है ना ये आप हमसे दोस्ती करेंगे तो जिस आपसे दोस्ती करने के लिए हमने हाथ बढ़ाया ही है तो बस ये गाना हो जाए आशा जी की आवाज़ में अकय याग्निक की आवाज़ में साथ में उदित नारायण साहब की आवाज़ में जब ये गाना है हाँ ये गाना जाएगा छोटी जी है पोलाव जी से खास तौर पर पूरे परिवार के लिए साथ में हरीश बाबू जो है बुबासे के उनके लिए साथ में दीदी ललिता ऑल्सो गोज टू सैपिया के हमारे भाई जो हैं रवींद्र जी आप सुन रहे हैं ना आपके लिए मीता और गीता के लिए तो बस ये गाना आपके लिए

जय दोस्तों, हमारे आपकी दोस्ती पक्की। हम फिर से आएंगे अगले सप्ताह और आज बच्चन साहब के गाने हमने चलाए, किशोरदा की आवाज़ में भी आपने गाने सुने, साथ में उदित नारायण साहब। सो संगीत की सबसे बड़ी खूबी ये है कि यह वक्त की सीमाओं को पार कर जाता है। कलाकार भले ही हमारे बीच न हो, हमारे बीच रहे भी, लेकिन उनकी कला, उनकी आवाज़ हर पीढ़ी के दिल में ज़िंदा रहती है। बस कुछ आवाज़ें कभी खामोश नहीं होती, कुछ गीत कभी पुराने नहीं होते, और कुछ कलाकार ऐसे होते हैं जो अपनी कला से हमेशा

0: हमारे दिलों में जिंदा रहते हैं। सो बस आप सभी का दिल हमने छुआ होगा हमारे गानों से, हमारी बातों से, बस आपको एंटरटेन किया और आप खुश तो हम खुश। आप सभी का दिल से शुक्रिया है, आपने इस विशेष संगीतमय सफ़र में हमारा साथ दिया। मैं हूँ देविना, साइनिंग ऑफ। और आप सुन रहे थे सुहाना सफ़र प्रोग्राम। हमारे बाद आ रहे हैं अजय प्रताप सिंह लेकर, ऐसा भी होता है प्रोग्राम, उनका साथ ज़रूर दीजिएगा। मुस्कुराते रहिए, गुनगुनाते रहिए और संगीत से अपने रिश्तों को हमेशा खूबसूरत बनाते रहें। और आपकी पूजा सफल हो, आपका जो वीक आने वाला है, हफ्ता जो आ रहा है, आपका हो मंगलमय। पूजा पाठ कीजिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। फिर मिलेंगे अगले सप्ताह एक नए सफ़र के साथ, नई यादों के साथ और नए गीतों के साथ। सो तब तक कहेंगे आप सभी को लव यू ऑल, बाय बाय। ये गाना आप सबों के लिए।
1: जब दिल मिले मिले मिले दिल मिले, तब गुल खिले खिले खिले गुल खिले। जब दिल मिले तब गुल खिले, जब गुल खिले तब दिल मिले। मिले मिले मिले मिले दिल मिले,

0: सुनते हैं समाचार विधिमा के साथ आपको नमस्कार विधिमा
1: नमस्कार हंसनी सभी को नमस्कार इरुजी टोमास की स्वास्थ्य स्थिति स्थिर बताई जा रही है उनका इलाज कर रही मेडिकल टीम ने आज सुबह स्वास्थ्य मंत्री के साथ एक बैठक की जिसमें कई सांसद भी उपस्थित थे डॉक्टरों की टीम भारतीय विशेषज्ञों के लगातार संपर्क में है जिनके कल दोपहर तक देश पहुँचने की उम्मीद है इस घटना ने राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का ध्यान आकर्षित किया है जिसने न्यायिक जांच की मांग की है लंबी अवधि के समाधानों के इंतजार के बीच परिवार पानी के कटौती से बेहतर तरीके से निपटने के लिए वित्तीय सहायता का लाभ उठा सकेंगे पानी की टंकी और पंप खरीदने के लिए ₹15,000 की सब्सिडी के वास्ते पंजीकरण इस सोमवार 12 अक्टूबर से शुरू हो रहे हैं ये कैलेंडर सरनेम के पहले अक्षर के अनुसार तय किया गया है जिन लोगों का नाम ए से एम अक्षर से शुरू होता है वे सोमवार से बुधवार तक पंजीकरण करा सकेंगे जिनका नाम एन से जेड अक्षर से शुरू होता है वे गुरुवार से शुक्रवार तक ऐसा कर सकेंगे पंजीकरण सुबह 9 बजे से 3 बजे तक सैंपल में CWA के मुख्य कार्यालय या देश भर के में विभिन्न कार्यालयों में किए जाएंगे इसके लिए नेशनल आइडेंटिटी कार्ड और CWA का एक बिल दिखाना होगा ऑनलाइन टैक्स रिटर्न जमा करने की अंतिम तिथि में 4 दिन बाकी हैं इसकी समय सीमा गुरुवार 15 अक्टूबर की आधी रात तय की गई है जिसके बाद जुर्माना और ब्याज देना पड़ सकता है जिन्हें मदद की आवश्यकता है उनका सहयोग करने के लिए मॉरिशस रेवेन्यू अथॉरिटी आज रविवार को शाम 4 बजे तक विशेष रूप से खुली रहेगी और विदेश में एक मानवाधिकार समूह के अनुसार इथियोपिया की सीमा से लगी सूडान के ब्लू नाइल क्षेत्र में देश के अर्धसैनिक बलों द्वारा किए गए ड्रोन हमले में 41 लोगों की मौत हो गई है तो इन्हीं खबरों के साथ ही संक्षिप्त समाचार समाप्त हुए थोड़ी देर में शोक समाचार एमरल्ड रोड मुसल मौला वैली सेंट क्वा में 67 साल की 67 years old की बीबी फातिमा रामकलावन पैदाइशी नाम दाऊद सिलर और जुमुनत नाम से भी जानी जाती थी इंतकाल कर गई हैं उनका जनाजा आज शाम 4 बजे उनके घर एमरल्ड रोड मुसल मौला वैली सेंट क्वा से उठाकर रिश्ते का कब्रिस्तान ले जाया जाएगा फ्यूनरल दिस आफ्टरनून एट 4 PM शोक में डूबे इस परिवार के प्रति हमारी संवेदना है
2: You're listening to
3: continuous music. RM3.
4: ऐसा भी होता है on RM3.
5: मनुष्य के मन में क्या है कोई नहीं

नहीं जान सकता। कैसे वो शैतान बन गया पता ही नहीं चला। भगवान ने उसे क्या सोचकर बनाया था, पर मनुष्य जब संसार में आया तो वो मनुष्यता ही भूल गया। वो वही करता है जो उसका मन करता है। वो किसी की बात को नहीं सुनता। वो सोचता है कि वो दुनिया में सबसे बड़ा ताकतवर है, उससे ताकतवर और कोई नहीं। वो वही करता है जो उसके मन में आता है, जो उसके दिल में आता है। कौन समझाएगा इंसान को, कौन समझाएगा इंसान को जब इंसान का बुद्धि ही भ्रष्ट हो गया हो। क्या सोचकर भगवान ने मनुष्य को संसार में भेजा था, पर आज मनुष्य क्या कर रहा है। ए मनुष्यों, क्या तुम्हें पता है कि तुम क्या कर रहे हो। तेरा हर एक कर्म, तेरी हर एक करनी प्रभु को पता है। अंत समय में तेरा न्याय होगा। तब मत रोना, मत कहना आह मुझे पता नहीं था। मनुष्य को अपने कर्मों का फल भुगतना ही पड़ता है। लेडीज एंड जेंटलमैन, सांस और आवाज के हमारे प्यारे प्यारे दोस्तों, स्वीकार कीजिए अजय प्रताप सिंह का प्यार भरा नमस्कार। वेलकम टू माय शो, वीकली प्रोग्राम ऐसा भी होता है, अद्भुत सनसनी का प्रोग्राम, अद्भुत सनसनी खबरों का प्रोग्राम ऑन आर एम प्री, एमबीसी आर एम प्री रेडियो मनोरंजन, शाम के 3 से 4 बजे, आज है संडे 11 अक्टूबर 2026, आपका स्वागत है। सो चलिए हम आपको ले चलते हैं अद्भुत सनसनी खबरों की दुनिया में, जहां डरना मना है।

ऐसा भी होता है कार्यक्रम और इन फ्री रेडियो मनोरंजन पर शाम के 4 बजे तक उसके बाद 4 से 5 बजे हम आपसे मिलेंगे रेडियो मॉरिशस पर प्रस्तुत करेंगे हमारा प्रोग्राम और उसके बाद 5 से 6 बजे का तो हार्पर सिंह सो अभी शाम के 3 बजे से शाम के 6 बजे तक आज हम आपका साथ देंगे एक्सक्लूसिवली रेडियो मनोरंजन रेडियो मॉरिशस पर और ऐसा भी होता है कार्यक्रम अब हम बात करेंगे पुरुषों में बांझपन के बारे में आजकल पुरुषों में प्रजनन क्षमता मेल फर्टिलिटी को लेकर चिंता बढ़ती जा रही है कई दंपतियों को बच्चा पैदा करने में कठिनाई होती है और इसके पीछे पुरुष तथा महिला दोनों से जुड़े कारण हो सकते हैं पहले इस विषय पर खुलकर बात कम होती थी लेकिन आज जांच और जागरूकता बढ़ने के कारण यह समस्या अधिक सामने आ रही है सबसे महत्वपूर्ण बात पुरुषों में बांझपन का मतलब हमेशा यह नहीं होता कि वे कभी पिता नहीं बन सकते कई मामलों में सही जांच जीवन शैली में बदलाव और उचित इलाज से गर्भधारण की संभावना बढ़ाई जा सकती है पुरुष की प्रजनन क्षमता मुख्य रूप से शुक्राणु यानी कि स्पर्म के उत्पादन उनकी गुणवत्ता और अंडाणु तक पहुंचने की क्षमता पर निर्भर करती है पुरुषों में प्रजनन संबंधी समस्या मुख्यतः इन कारणों से हो सकती है शुक्राणुओं की संख्या कम होना यानी कि वीर्य में सामान्य से कम शुक्राणु होना शुक्राणुओं की गति कम होना शुक्राणु अंडाणु तक ठीक से नहीं पहुंच पाते शुक्राणुओं का आकार असामान्य होना इससे उनकी कार्य क्षमता प्रभावित हो सकती है शुक्राणु बिल्कुल न बनना या वीर्य में न मिलना हार्मोन की समस्या टेस्टोस्टेरोन या प्रजनन हार्मोन में गड़बड़ी यौन या स्खलन संबंधी समस्या जैसे इरेक्शन में कठिनाई या वीर्य का सही दिशा में न निकलना विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO के अनुसार नियमित असुरक्षित यौन संबंध के बावजूद 12 महीने या उससे अधिक समय तक

गर्भधारण न होना बांझपन के चिकित्सीय परिभाषा में आता है। पुरुष महिला या दोनों में कारण हो सकते हैं। आज पुरुषों में बांझपन बढ़ने के प्रमुख कारण है धूम्रपान, तंबाकू और नशीले पदार्थ। अगर मर्द पुरुष लोग ज़्यादा सिगरेट फूकते हैं, बीड़ी फूकते हैं, तंबाकू लेते हैं या नशीले पदार्थ जैसे अल्कोहल का सेवन करते हैं तो उनका स्पर्म जो है, उनका जो वीर्य है वो उसका क्वालिटी बर्बाद हो जाएगा और वो लोग कभी पिता नहीं बन पाएंगे। दूसरा कारण है पुरुष क्यों बांझ हो सकता है, मोटापा, ओबेसिटी के कारण। और शारीरिक गतिविधि अगर कम हो, शारीरिक गतिविधि कम हो तो मर्द जो है ओबेज हो जाता है, मोटा हो जाता है और इससे उसका टेस्टोस्टेरोन लेवल कम हो जाता है। तीसरा कारण है खान पान में गड़बड़ी। अधिकतर अत्यधिक जंक फूड, मीठे पेय और पोषक तत्वों की कमी वाला भोजन वजन व चाय संबंधी समस्याओं को बढ़ा सकता है। और फिर मनुष्य को कभी कभी बाप नहीं बन सकता क्योंकि तनाव और नींद की कमी के कारण। लंबा समय तक अगर पुरुष तनावग्रस्त रहता है तो उसका जो स्पर्म, जो वीर्य की क्वालिटी है वो कम हो सकती है। और अगर कम नींद पुरुष को आता है तो उससे भी बेबी पैदा करने में प्रॉब्लम हो सकता है। और जैसे कि हमने आपको बताया कि बहुत से ऐसे कारण हैं जिससे जो पुरुष है वो बाप नहीं बन पाते हैं। और बांझपन के ऐसे कारण को केवल जीवन शैली से जुड़े नहीं है, कई पुरुष स्वस्थ जीवन शैली अपनाने के बावजूद प्रजनन संबंधी समस्याओं का सामना करते हैं। इसके पीछे चिकित्सीय कारण हो सकते हैं जैसे कि वेरिसोसेल, अंडकोश के आसपास की नसों का फैलना जिससे कुछ पुरुषों में शुक्राणु उत्पादन प्रभावित होता है। हार्मोन संबंधी समस्या, मस्तिष्क की ग्रंथि हाइपोथैलेमस या अंडकोश से जुड़े हार्मोन में गड़बड़ी, संक्रमण, कुछ यौन संचारित संक्रमण, इरेक्शन का प्रॉब्लम या वीर्य अच्छी तरह से ना निकलना या वीर्य ओवरी तक अगर नहीं पहुंच पाता है तो बेबी कैसे पैदा होगा। और बहुत से ऐसे कारण हैं जिसे हमने आपको बताया कि बहुत से ऐसे पुरुष हैं जो पिता नहीं बन पाते। और जब पुरुष पिता नहीं बन पाते हैं तो महिला घबरा जाती है, कभी कभी महिला भी बांझ बन जाती है, उनके भी प्रॉब्लम्स होते हैं। सो जैसे हम सुनते हैं कि महिला बांझ होती है, वैसे कुछ ऐसे बहुत से ऐसे पुरुष भी है जिनमें बांझपन है, पुरुष भी बांझ हो सकते हैं। अगर उनकी वीर्य की क्वालिटी, उनकी स्पर्म की क्वालिटी और क्वान्टिटी अच्छी नहीं है तो बेबी कभी पैदा हो ही नहीं सकता।

कहते हैं दोस्तों कि ज़िंदगी कभी आसान नहीं होती, हर किसी की ज़िंदगी में कठिनाइयां आती रहती है। और ऐसा एक शख्स था भारत में जिसके जीवन में बहुत सारी कठिनाइयां आती रही। आज वो हमारे साथ नहीं पर उनकी यादें हमारे साथ है। जी हम बात करें राजीव गांधी के बारे में। वो भारत के प्रधानमंत्री थे और उन्होंने काफ़ी सालों तक भारत रूल किया और उनके बहुत सारे सपने थे। पर अफसोस की बात है कि राजीव गांधी जो है उनका जीवन और उनकी असमय मृत्यु भारतीय इतिहास की सबसे दुखद घटनाओं में से एक है। 21 मई 1991 को तमिलनाडु के श्री पेरनबंदूर में एक चुनावी सभा के दौरान आत्मघाती बम हमले में उनकी हत्या कर दी गई। उस समय उनकी उम्र केवल 45 वर्ष का था और यह घटना इसलिए भी दुखद थी क्योंकि राजीव गांधी भारत के प्रधानमंत्री रह चुके थे और 1991 के आम चुनाव के लिए प्रचार कर रहे थे। उनकी मृत्यु में उनके साथ कई अन्य लोगों की भी जान गई। उस रात क्या हुआ था? सो 21 मई 1991 की रात राजीव गांधी तमिलनाडु के श्रीपेरनबंदूर में चुनाव प्रचार के लिए पहुंचे थे। वहां कांग्रेस के समर्थक और स्थानीय लोग उनका स्वागत करने के लिए एकत्र हुए थे। उस समय भारत में आम चुनाव चल रहे थे। राजीव गांधी देश के विभिन्न हिस्सों में सभाएं कर रहे थे और लोगों से मिल रहे थे। सभा स्थल पर वे लोगों के बीच जाकर उनसे मिलने लगे। उसी दौरान धनु नाम की एक महिला आत्मघाती हमलावर उनके पास पहुंची, उनके अपने शरीर पर बंधे विस्फोट उपकरण में विस्फोट कर दिया। विस्फोट इतना शक्तिशाली था कि राजीव गांधी सहित कई लोगों की घटनास्थल पर ही मृत्यु हो गई। इस हमले में सुरक्षा

कर्मियों और अन्य नागरिकों की भी जान गई। इस घटना को इतना दर्दनाक क्यों कहा जाता है? राजीव गांधी की उम्र केवल 45 साल की उम्र का था और वे एक चुनावी सभा में जनता से मिलने गए थे। हमले में निर्दोष नागरिकों और सुरक्षा कर्मियों की भी मृत्यु हुई। देश ने एक पूर्व प्रधानमंत्री को हिंसक हमले में खो दिया। इस घटना ने भारत में नेताओं की सुरक्षा और आतंकवाद से निपटने के तरीकों पर गंभीर सवाल खड़े किए। भारत सरकार की गृह मंत्रालय की 1991-1992 की रिपोर्ट में इस हत्या के बाद देश भर में आक्रोश और विरोध प्रदर्शनों का उल्लेख है। राजीव गांधी की हत्या के पीछे कौन था? जांच में इस हत्या का संबंध श्रीलंका के तमिल उग्रवादी संगठन लिबरेशन टाइगर ऑफ तमिल लिट के स्थापित किया गया। यह संगठन श्रीलंका में एक स्वतंत्र तमिल राज की मांग को लेकर सशस्त्र संघर्ष कर रहा था। राजीव गांधी ने प्रधानमंत्री कार्यालय कार्यकाल में भारत ने श्रीलंका में भारतीय शांति सेना भेजी थी। इस हस्तक्षेप और के साथ उसे संघर्ष ने संगठन तथा राजीव गांधी के बीच गहरी दुश्मनी पैदा की। यह हत्या की पृष्ठभूमि को समझने का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। हालांकि घटना के पीछे के सभी राजनीतिक और सुरक्षा संबंधी पहलुओं को समझने के लिए जांच आयोगों की रिपोर्ट तथा न्यायालय के फैसलों को अलग अलग देखना आवश्यक है। हत्या के बाद क्या हुआ? तो हत्या के बाद केंद्रीय जांच ब्यूरो CBI की विशेष जांच टीम ने मामले की जांच की। कई लोगों को गिरफ्तार किया गया और मुकदमा चलाया गया। इस मामले में न्यायीय प्रक्रिया कई वर्षों तक चली। सुरक्षा व्यवस्था में हुई संभावित चूकों की जांच के लिए न्यायमूर्ति JM वर्मा के नेतृत्व में उपयोग बनाया गया। हत्या की व्यापक परिस्थितियों की जाँच के लिए न्यायमूर्ति MC जैन के नेतृत्व में अलग आयोग भी गठित किया गया। राजीव गांधी की स्मृति में शेरपेरून बंदर में स्मारक बनाया गया, जहां लोग उन्हें श्रद्धांजलि देने जाते हैं। तो जैसे कि हमने आपको बताया कि वो राजीव गांधी भारत के प्रधानमंत्री थे और आत्मघाती हमले में उनकी जान ली गई। सो इससे दुनिया को बहुत दुख पहुंचा और बेशक ऐसे भी लोग होते हैं जो लोगों की जान लेने के तुले रहते हैं। आखिर लोग ऐसा क्यों करते हैं? वो तो वहाँ के मंत्री थे और वो जो है भारत का रूल कर रहे थे। फिर लोगों में जो है कभी कभी जलन की भावना के कारण लोग किसी को मार डालते हैं। और राजीव गांधी की दर्दनाक मौत हुई, इस मौत से दुनिया भर को सदमा पहुंचा। सो दुनिया में कभी कभी ऐसा भी होता है दोस्तों, ऐसा भी होता है।

अपना पेट पालने के लिए रोजी रोटी कमाने के लिए अपने परिवार के पालन पोषण के लिए हर इंसान को काम करना पड़ता है पर कभी कभी कुछ काम बहुत डेलिकेट होते हैं बहुत खतरनाक होते हैं बहुत डरावना होते हैं उन्हीं में से एक काम है जल्लाद अब आप सोच रहे हैं कि ये जल्लाद क्या है जल्लाद वह व्यक्ति है जिसे जेल में कानून के अनुसार मृत्यु दंड पाए कैदी को फांसी देने के लिए नियुक्त किया जाता है जिस देश में कैपिटल पनिशमेंट है मौत की सजा है वहां पर जेल में जल्लाद होता है यह काम अत्यंत संवेदनशील होता है और जेल प्रशासन के सख्त नियमों तथा अधिकारियों की निगरानी में किया जाता है भारत में हर एक जेल में स्थायी जल्लाद नहीं होता जरूरत पड़ने पर दूसरे स्थान से भी जल्लाद को बुलाया जाता है सो जल्लाद की मुख्य जिम्मेदारियां क्या होती है फांसी से पहले तैयारी जेल प्रशासन के निर्देशों के अनुसार निर्धारित उपकरणों और फांसी की व्यवस्था की जांच में भाग लेना आदेश और पहचान की पुष्टि जेल अधीक्षक तथा संबंधित अधिकारियों की प्रक्रिया पूरे होने के बाद ही अपनी जिम्मेदारी निभाना फांसी की प्रक्रिया में सहायता अधिकृत आदेश के अनुसार फांसी देने का निर्धारित कार्य करना अधिकारियों के निर्देशों का पालन पूरी प्रक्रिया जेल अधीक्षक मैजिस्ट्रेट और चिकित्सा अधिकारी

की उपस्थिति तथा निगरानी में होती है। प्रक्रिया पूरी होने के बाद चिकित्सा अधिकारी मृत्यु की पुष्टि करता है। इसके बाद जेल प्रशासन शव और आवश्यक दस्तावेजों में संबंधित औपचारिकताओं को पूरी करता है। क्या जल्लाद ही फांसी का पूरा निर्णय लेता है? नहीं, जल्लाद यह तय नहीं करता कि किस व्यक्ति को फांसी दी जाए। मृत्यु दंड न्यायालय द्वारा किया जाता है और उसे लागू करने के लिए निर्धारित कानूनी प्रक्रिया का पालन करना आवश्यक होता है। जल्लाद केवल अपनी निर्धारित भूमिका निभाता है। और जल्लाद को कितना वेतन मिलता है? जल्लाद के वेतन की कोई एक समान राष्ट्रीय दर नहीं है। भुगतान राज्य जेल प्रशासन नियुक्ति की प्रक्रिया और संबंधित नियमों पर निर्भर कर सकता है। कुछ मामलों में नियमित सरकारी पद के बजाय विशेष अवसर पर सेवा लेने की व्यवस्था होती है। इसलिए किसी एक निश्चित रकम की को पूरा भारत के लिए सही माना नहीं जा सकता। क्या जल्लाद के काम का मानसिक प्रभाव पड़ता है? यह काम मानसिक रूप से कठिन हो सकता है। किसी को मृत्यु देना केवल जल्लाद ही कर सकता है। अगर पहला तो भगवान हमारी जान ले सकता है, पर दूसरा है जल्लाद। इसमें किसी व्यक्ति की मृत्यु से सीधे जुड़ी जिम्मेदारी होती है, लेकिन प्रत्येक जल्लाद की भावनाओं या मानसिक स्थिति के बारे में एक जैसा निष्कर्ष नहीं निकाला जा सकता। इसलिए इसके लिए व्यक्तित्व अनुभवों और विश्वसनीय साक्षात्कारों की जरूरत होती है। संक्षेप में, जल्लाद का काम केवल फांसी देना नहीं होता है, बल्कि कानून के अंतर्गत निर्धारित प्रक्रिया में अपनी सीमित और गंभीर जिम्मेदारी निभाना है। मृत्युदंड का निर्णय, कानूनी अनुमति और पूरी प्रक्रिया की निगरानी संबंधित न्यायीय तथा जेल अधिकारियों के अधिकार क्षेत्र में आती है। सो जरूर याद कीजिएगा दोस्तों कि कुछ देशों में अगर लोग जो है न्याय का पालन नहीं करते हैं तो उन्हें मौत की सजा मिलती है। और उन्हें मौत देता कौन है? उन्हें मौत देता है जल्लाद। जल्लाद भी एक काम है और वर्क इज वर्शिप जैसे हम कहते हैं, काम करना पड़ता है अपने पेट पालने के लिए, अपने परिवार के पालन पोषण करने के लिए जल्लाद का भी काम करना पड़ता है।

ऐसा भी होता है कार्यक्रम आपके अपने एमबीसी रेडियो मनोरंजन पर शाम के 3 से 4 बजे के बीच एवरी संडे की शाम। दूसरे दुनिया में बहुत से ऐसे खतरनाक जीव जंतु हैं, उन्हीं में से एक है मगरमच्छ, क्रोकोडाइल। अरे भाई, जब क्रोकोडाइल का हम नाम ही लेते हैं तो उसका जो आकार होता है, उसकी आंखें होती है, उसका जो चमड़ा होता है, आपने फिल्म में देखी होगी, फिल्म खून भरी मांग में किस तरह से वो जो मगरमच्छ होता है एक रेखा को खा जाता है। सो बहुत ही डर लगता है। पर यह जो क्रोकोडाइल होता है उसका भी अपना जीवन होता है, क्योंकि वो भी सृष्टि का एक भाग है। और मगरमच्छ पृथ्वी पर पाए जाने वाले सबसे प्राचीन वंश के सरीसृपों में से एक है। इसके पूर्वजों का इतिहास करोड़ों वर्ष पुराना है। मगरमच्छ पानी और ज़मीन दोनों जगह पे रह सकता है। भाई क्या बात है, जी हाँ, वो ज़मीन पर भी चल सकता है और पानी में भी रहता है। यह एक कुशल शिकारी है और इसके जबड़े शक्तिशाली होते हैं, और जिसके आंखें, नाक तथा कान पानी की सतह के पास रहते हुए भी काम कर सकती है। मगरमच्छ यानी कि क्रोकोडाइल का जीवन बहुत रोचक है। वह अंडे से निकलता है, बचपन में कई शिकारी जीवों से अपनी रक्षा करता है और बड़ा होने पर अपने क्षेत्र का एक शक्तिशाली शिकारी बन सकता है। मगरमच्छ कहाँ रहता है? यह बात जानना जरूरी है कि मगरमच्छ की अलग अलग प्रजातियां दुनिया के गर्म क्षेत्रों में पाई जाती हैं, कि वो गर्म पानी में रहता है। इनका निवास मुख्य रूप से अफ्रीका, एशिया, ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका के कुछ हिस्सों में है। नदियां और झीलें, कई प्रजातियां मीठे पानी में भी रहती है। दलदल, यहाँ भोजन और छिपने की जगह आसानी से मिलती है। फिर मुहाने और मैंग्रोव, खारे और मीठे पानी के मिलने वाले क्षेत्रों में भी कुछ प्रजातियां रहती है। तटीय क्षेत्र खारे पानी का मगर

मगरमच्छ समुद्री तटों और कभी-कभी समुद्र में भी लंबी दूरी तक तैर सकता है। क्या बात है, मगरमच्छ ठंडे खून वाला जीव है, अर्थात उसके शरीर का तापमान वातावरण के अनुसार बदलता है, इसलिए वह अपने शरीर को गर्म रखने के लिए धूप सेकता है। हाँ, इसीलिए क्रोकोडाइल पर मॉरिशस में जाएंगे तो आप देखेंगे किस प्रकार मगरमच्छ पानी से निकल के अपने शरीर को धूप में सेंकता है और ज़रूरत पड़ने पर पानी में चला जाता है। और मगरमच्छ का शरीर पानी में शिकार करने के लिए विशेष रूप से अनुकूल होता है। शिकार को मजबूती से पकड़ने के लिए शक्तिशाली होते हैं उनके जबड़े, उनके दांत नुकीले होते हैं और टूटने या गिरने पर कई प्रजातियां में नए दांत उग सकते हैं। मजबूत और मांसल होती है मगरमच्छ, जो तैरने में मुख्य भूमिका निभाती है और सिर के ऊपरी हिस्से में होती है उसकी आँखें और नाक। इसलिए मगरमच्छ शरीर का अधिकतर हिस्सा पानी में रखकर भी देख और सांस ले सकता है। मगरमच्छ की त्वचा मोटी और कठोर शल्कों से ढकी होती है, जिनमें कुछ हिस्सों में हड्डी जैसी प्लेटें भी होती है। सांस लेने की क्षमता, मगरमच्छ फेफड़ों से सांस लेता है, यह मछली की तरह गलफड़ों में सांस नहीं लेता। मगरमच्छ का जन्म, मगरमच्छ अंडे देने वाला जीव है, इसका जीवन कई चरणों में गुजरता है। मादा मगरमच्छ नदी के किनारे मिट्टी रेत या पेड़ पौधे से घोंसला बनाती है। प्रजाति के अनुसार यह कई दर्जन अंडे दे सकती है। मादा अक्सर घोंसले के आसपास रहती है और अंडों की को दूसरे जीवों में से बचाती हुई है। कुछ प्रजातियां में नर की सुरक्षा में भूमिका निभाता है। अंडे से बच्चे निकलना, प्रजाति और तापमान के अनुसार ठंडे अंडे फूटने में लगभग 2 से 3 महीने या कभी इससे अधिक समय लगता है। कुछ बच्चों की आवाज़ सुनकर माँ घोंसला खोलने में मदद करती है। नवजात मगरमच्छ छोटे कीड़े, जलीय जीव और छोटी मछलियाँ खाते हैं। इस समय वे पक्षियाँ, सांपों और बड़े मगरमच्छों तथा जैसे शिकारियों के प्रति बहुत संवेदनशील होते हैं। युवावस्था और व्यवस्थ जीवन, समय के साथ उनका आकार बढ़ता है, वे बड़े शिकार पकड़ने में लग जाते हैं और अंततः प्रजनन करने योग्य बन जाते हैं। एक दिलचस्प तथ्य यह है कि कई मगरमच्छ प्रजातियों में अंडों के आसपास का तापमान बच्चों में नर या मादा होने को प्रभावित करता है। अब आप पूछेंगे कि मगरमच्छ जंतु क्या खाता है। सो वह मांसाहारी होता है, उसे गोश्त पसंद है। उसका भोजन उम्र, शरीर के आकार और निवास स्थान पर निर्भर है। जीवन का चरण मुख्य भोजन, नवजात बच्चा, छोटे कीड़े, छोटे जलीय जीव खाते हैं। छोटा मगरमच्छ मछलियाँ, मेंढक, केंकड़े और छोटे जीव खाते हैं। बड़ा मगरमच्छ जो है बड़ी मछलियाँ, पक्षी, कछुए और स्तनधारी। बहुत बड़ा मगरमच्छ परिस्थितियों के अनुसार बड़े स्तनधारी तथा अन्य उपलब्ध शिकार। मगरमच्छ अक्सर पानी में छिपकर शिकार के पास आने का इंतजार करते हैं। सही मौका मिलने पर वह तेजी से हमला करता है। कुछ बड़े मगरमच्छ शिकार को पकड़कर पानी में खींच सकते हैं। मगरमच्छ जिस पर भी प्रहार करता है उसे पटक पटक कर पानी में मारता है और उसे खा जाता है। वो अपने शरीर के आकार, तापमान और भोजन की उपलब्धि के अनुसार लंबा अंतराल तक बिना खाए रह सकता है। और मगरमच्छ कितने साल जीता है, मगरमच्छ की उम्र उसकी प्रजाति, स्वास्थ्य और वातावरण पर निर्भर करता है। नील मगरमच्छ की औसत प्राकृतिक आयु लगभग 45 years, जी हाँ 45 साल। अमरीकी मगरमच्छ 60-70 वर्ष तक जी सकता है। कुछ अन्य प्रजातियों में कई दशकों तक जीवन रहने की क्षमता होती है। इसे यह कहना सही नहीं है कि हर मगरमच्छ 100 या 200 साल जीवित रह सकता है, माई गॉड, पर कहीं कहीं पर देखा गया है कि बहुत से मगरमच्छ 100-200 साल तक जीवित रह सकते हैं। सो यह जो मगरमच्छ है, क्रोकोडाइल है, उसे जब हम देखते हैं तो हम डरते हैं, हमें वो भय रहता है, क्योंकि मगरमच्छ की बड़ी बड़ी दांतें हैं और उसकी आँखें, उसका शरीर देखकर हम कांपने लगते हैं। पर वो भी एक जीव है, भगवान ने उसे भी बनाया है और वो पानी में रहकर भी और पानी से बाहर भी रह सकता है। वो पानी में भी रहता है और ज़मीन पर भी रेंग सकता है। सो कभी भी मगरमच्छ के पास मत जाइएगा, उसे दूर से देखिएगा, पर अब उसके पास जाएंगे तो आप

जानते हैं क्या हो सकता है। सो जो है खतरनाक जानवरों में से दुनिया भर के जो खतरनाक जानवर होते हैं उनमें से एक जानवर है मगरमच्छ यानी कि क्रोकोडाइल। लेडीज एंड जेंटलमैन, गाइज एंड गर्ल्स, इसी न्यूज के साथ और इसी गीत के साथ अद्भुत सनसनी खबरों का प्रोग्राम ऐसा भी होता है यहीं पर समाप्त होने जा रहा है। थैंक यू फॉर लिसनिंग। 3 to 4 o'clock, 4 o'clock होगा फ्लैश न्यूज के बाद डॉक्टर पूनम से आप सुनेंगे फिल्मी गजलें। हमारी आपकी मुलाकात हो रही है 4 o'clock रेडियो मॉरिशस पर हम और आप प्रोग्राम के साथ, उसके बाद 5 to 6 o'clock का तो हर बस सीन हमारे साथ। सो 4 to 6 o'clock हम आपसे मिल रहे हैं रेडियो मॉरिशस पर। सुनते रहिए प्यार से MBC रेडियो।

0: बार बज रहे हैं। सुनते समाचार अभी के साथ नमस्कार।
1: नमस्कार संजय, श्रोताओं को भी नमस्कार और आदाब। संक्षिप्त समाचारों में स्वागत है। शुरुआत करते हैं स्थानीय खबरों के साथ। एलोजी थॉमस की स्वास्थ्य स्थिति स्थिर बताई जा रही है। उनका इलाज कल कर रही मेडिकल टीम ने आज सुबह स्वास्थ्य मंत्री के साथ एक बैठक की, जिसमें कई सांसद भी उपस्थित थे। डॉक्टरों की टीम भारतीय विशेषज्ञों से लगातार संपर्क में है, जिनके कल दोपहर तक देश पहुंचने की उम्मीद है। उनके आगमन के बाद मरीज की स्थिति का मूल्यांकन किया जाएगा, जिसके बाद उचित मेडिकल प्रोटोकॉल पर फैसला लिया जाएगा। कल शाम थॉमस परिवार से उप प्रधानमंत्री और युवा एवं खेल मंत्री ने मुलाकात की। देवेन नागालिंगम ने आश्वासन दिलाया कि एलोजी थॉमस की स्वास्थ्य स्थिति को बेहतर बनाए रखने के लिए हर संभव प्रयास किया जा रहा है। वही आर्यन नवामारी ने उस घटना के गवाहों से आगे आने की मांग की है, जिसमें युवा मां घायल हुई है, और उन्होंने ये भी कहा है कि उनकी सुरक्षा सुनिश्चित की जाएगी। और इस घटना ने राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का ध्यान भी आकृष्ट किया है, जिसने न्यायिक जांच की मांग की है। मानवाधिकार डिवीजन के सदस्य जो-मारी रिशो ने याद दिलाया कि हथियारों का इस्तेमाल हमेशा अंतिम विकल्प होना चाहिए। पानी का संकट चिंता का मुख्य केंद्र बना हुआ है। महोवाकवा जलाशय के 36% से नीचे चले जाने और भारी बारिश आने में लगभग 2 महीने बाकी होने के कारण मॉरिशस को इस सूखे से निपटने के लिए समाधान तलाशने होंगे। आज रविवार 11 अक्टूबर को शारदीय नवरात्र शुरू हो रही है, जो देवी भगवती मां दुर्गा के 9 रूपों को समर्पित है। नवरात्रों तक चलने वाला यह भक्ति का समय प्रार्थनाओं और धार्मिक अनुष्ठानों से भरा होता है, जो बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक है। उत्सव की शुरुआत आज देवी शैलपुत्री की पूजा अर्चना के साथ हो रही है। यह आध्यात्मिक आस्था और सदियों पुरानी परंपराओं का पर्व है, जिसका समापन आगामी 20 अक्टूबर को विजयादशमी के साथ होगा। ऑनलाइन टैक्स रिटर्न जमा करने की अंतिम तारीख में 4 दिन बाकी होने के कारण करदाताओं पर दबाव बढ़ गया है। इसकी समय सीमा इस गुरुवार 15 अक्टूबर की आधी रात तय की गई है, जिसके बाद जुर्माना और ब्याज देना पड़ सकता है। ज्ञात हो कि शुक्रवार 9 अक्टूबर तक 178,000 से अधिक टैक्स रिटर्न पहले ही दर्ज किए जा चुके हैं, जिन्हें मदद की आवश्यकता है। उनका सहयोग करने के लिए मॉरिशस रेवेन्यू अथॉरिटी आज रविवार को शाम के 4 बजे तक विशेष रूप से खुला रहेगा। विदेशी स्तर पर हम देखते हैं कि तूफान इसाइयास के तेज हवाओं और भारी बारिश से अमेरिका के दक्षिणी हिस्सों में भारी तबाही मची है, जिसमें 4 लोगों की मौत हो गई है और लाखों लोग बिजली न होने के कारण अंधेरे में हैं। तो ये थी अब तक की खबरें, आप लोगों ने ध्यान दिया इसके लिए धन्यवाद। 6 बजे विस्तार के साथ सायंकालीन समाचार बुलेटिन सुन पाएंगे, तब तक अभी को दीजिए अनुमति। नमस्कार और आदाब।
2: You're listening to RM3 Radio Man.

नमस्ते आदा, वेरी गुड इवनिंग एवरीवन। 4:09 हो चुके हैं। कभी दिल किसी की मुस्कुराहट पर खुश हो जाता है, तो कभी किसी की याद

आंखों को नम कर देती है। और प्यार भी कितना खूबसूरत एहसास है ना, कभी सुकून देता है और कभी बहुत सी बेचैनी दे जाता है। तो आज कुछ ऐसी ही बातें होंगी शायरों की, ख्यालों की। मैं हूँ आपके साथ पूनम। शुरू करते हैं फिल्मी गजलें सिर्फ RM3 रेडियो मनोरंजन पर।

0: Castle.
1: 4:15 हो चुके हैं दोस्तों और हम जुड़े हुए हैं फिल्मी गज़लों के साथ। यहाँ पर हम बात करते हैं गज़लों की और हमारे शेर यानी कि शायरों की, शायरा की, और बहुत खूबसूरत खूबसूरत वो बातें जो अपने कहते हैं दिलों से निकलती हैं। एक बहुत बड़े शायर हुए, उनका नाम है सुदर्शन फ़कीर। सुदर्शन फ़कीर साहब ने गज़लों और गीतों में मोहब्बत, अकेलेपन और यादों को बहुत खूबसूरती से पेश किया है। लिखते हैं, कितने बरस गुजर गए उस मुलाकात को, कितने बरस गुजर गए उस मुलाकात को, फिर भी याद करता हूँ उसकी हर बात को। वो पूछता था दिन कैसे गुजरा तुम्हारा, वो पूछता था दिन कैसे गुजरा तुम्हारा, अब कौन सुनता है मेरे दिन और रात को। वाह, कभी कभी हमें किसी इंसान से ज़्यादा उसकी छोटी छोटी बातें याद आती हैं।

0: मंजिल।
1: 4:24 हो चुके हैं और हम बात कर रहे हैं शायरों की। एक बहुत प्यारी शायरा हुई है, उनका नाम है अंजुम रहबर। अंजुम रहमर अपनी खूबसूरत गज़लों और मुशायरों के लिए जानी जाती हैं। उनकी शायरी में मोहब्बत की नरमी और दिल के एहसास मिलते हैं। लिखती हैं, वो सामने आया तो कुछ कह ना सकी, दिल की बात बात जुबां पे ला ना सकी। सोचा था पूछूंगी इतने दिन कहाँ थे तुम, बस उसे देखा और नज़र हटा ना सकी। सच तो है, जैसे ही कोई अपना जिससे दिल जुड़ा हो वो सामने आ जाता है और सारी बातें भूल जाते हैं, बस दिल की धड़कन तेज़ हो जाती है।
0: RM3 Radio.

4:31 हो चुके हैं और हम बात कर रहे हैं शायरों की। एक शायर हुए, बहुत ही प्यारी लिखते हैं। लिखते हैं, तुम्हारी थकान चेहरे पर से पड़ जाती है, तुम्हारी थकान तुम्हारे चेहरे पर पड़ जाती है, तुम्हारी खामोशी भी समझ आ जाती है। तुम कहते हो सब ठीक है मेरे साथ, मैं फिर भी तुम्हारे लिए चाय रख जाती हूँ। क्यों रख जाती हूँ ये मैं नहीं जानती, पर मैं तुम्हारे चेहरे की हर दुख हर तकलीफ समझ पाती हूँ। ये सच बात है, कभी किसी से जब बहुत मोहब्बत होती है और वो इंसान सामने हो और किसी तकलीफ़ में हो और एहसास हो जाता है कि उसके दिल में क्या चल रहा है, और जब उसके दिल में क्या चल रहा है ये एहसास हो जाता है तो इतना भी एहसास हो जाता है कि हमें उससे मोहब्बत बहुत शदीद है। और जब जिससे मोहब्बत होती है और उससे अपने दिल की बात कही नहीं जाती, कहा जाता है बस कि तुम ठीक रहो मैं ठीक हूँ। RM3 Radio.

0: 4:38 हुए हैं दोस्तों और आप जुड़े हैं अपने ही साथ फिल्मी गज़लों के साथ और मैं हूं आपके साथ पूनम। कहते हैं दीवाना वही इंसान होता है जिसको किसी से मोहब्बत हो जाए और वो अपनी, कहते हैं ना, होशो हवाज़ खो जाए। दीवाना वही है और दीवानगी भी उसी को कहते हैं। तो कहते हैं एक हमारे शायर हस्ती मल हस्ती, कहते हैं उनकी जो शायरी थी बहुत सादगी से भरी हुई थी और ज़िंदगी और रिश्तों की गहराइयों को जोड़ती थी। लिखते हैं, उसने कहा था फिर मिलने आएंगे, उसने कहा था फिर मिलने आएंगे, कुछ पुराने किस्से फिर से सुनाएंगे। बरसों से वो रास्ता वैसा ही है, बरसों से वो रास्ता वैसा ही है, बस अब कौन है जो वहाँ आएंगे। कहते हैं ना कि वादे तो इंसान कर देता है पर जब पुरानी जगहों को देखता है, पुरानी चीज़ों को देखता है, बस दिल वहीं भाग जाता है और कहता है कि काश एक बार और मुलाकात हो जाए उस इंसान से जिसके पास मेरा दिल है।
1: RM3 Radio.

4:44 हो चुके हैं और कहते हैं कि यादें तो कहीं ना कहीं साथ चलती ही रहती हैं। यादों के बिना हम कहाँ रह सकते हैं। कभी बचपन की याद, कभी जवानी की याद, कभी बुढ़ापे में अपने उन दिनों की याद, बस कहीं ना कहीं एक याद बनी रहती है। इसी तरीके से एक हमारी बहुत ही प्यारी शायरा है, उनका नाम है तरन्नुम कानपुरी, लिखती हैं, आज फिर उसने मेरा नाम लिया जैसे दिल को कोई इनाम दिया, बात तो बस सिर्फ 2 मिनट की हुई पर उसने पूरा दिन मेरा खूबसूरत बना दिया। सच बात है, किसी ऐसे इंसान का जिससे आप बहुत प्यार करते हैं, उसका मैसेज आ जाए, उसका पत्र आ जाए, उसका कोई किसी से उसके बारे में पता चल जाए, या उसका सामने से चेहरा दिख जाए, कोई अचानक से कुछ भी ऐसा हो जाए, तो कहते हैं चेहरे पे मुस्कुराहट आ ही जाती है और वो मुस्कुराहट कहते हैं सारे कामों को सबसे ऊपर हो जाती है, सारे काम पीछे हो जाते हैं, बार बार उस इंसान का चेहरा याद आता है। RM3 Radio.

4:53 हो चुके हैं दोस्तों। आज की महफिल में कभी प्यार की बात हुई, कभी किसी की याद आई और कभी दिल का दर्द भी महसूस हुआ। यही तो गज़लों की खूबसूरती है ना। किसी ने अपनी कोई बात, कोई कहानी मिल जाती है,

किसी को एहसास हो जाता है जो ये गजल है शायद मुझ पे ही लिखी गई है या मेरे एहसासों पर लिखी गई है। तो मैं तो यही कहूँगी, ये सारों के एहसास बहुत खूबसूरत है, अपने साथ रखिए और बस हमारे साथ जुड़े रहिए। मुझसे पहले थे आपके साथ प्रताप जी और मेरे बाद आएंगे आपके साथ शीतल जी। तो मैं थी आपके साथ पूनम। अपना ध्यान रखिएगा, ख्याल रखिएगा। सभी को नवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं। RM3 Radio.

0: Center 94 North South 95.6 East West 98.2. You are listening to RM3 Radio.
1: साया जो हर पल हमारे साथ रहता है, एक ऐसा समय भी आता है कि वो साया साथ छोड़ जाती है, पर जो हमेशा दामन पकड़े रहती है वो है यादें।
2: जब हिंदी सिनेमा की बात चलती है तो कई महान कलाकारों के बीच एक अनोखे लंबे चौड़े कलाकार नजर आ जाते हैं, जिन्हें आज कोई इंट्रोडक्शन की जरूरत नहीं। ये भी कह सकते हैं कि हिंदी सिनेमा को इस मंच पर पहुंचाने का इस महान कलाकार का बहुत बड़ा योगदान रहा। बॉलीवुड के शहंशाह की बात चल रही है, द ग्रेट अमिताभ बच्चन साहब।

अमिताभ बच्चन के जन्म दिवस के खूबसूरत अवसर पर आज यादें प्रोग्राम हम कर रहे हैं उनके नाम उनके कुछ अनगिनत खूबसूरत गीतों से इस प्रोग्राम को हम सजाएंगे। अमिताभ बच्चन के फिल्मी सफर शुरू हुआ 1969 के फिल्म सात हिंदुस्तानी से, लेकिन उन्हें रिकॉग्निशन प्राप्त हुआ फिल्म आनंद से, जहां उन्होंने काम किया हिंदी सिनेमा के फर्स्ट सुपरस्टार के ऑपोजिट राजेश खन्ना के ऑपोजिट, और यहां उन्हें प्राप्त हुआ बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर का खिताब। यहीं से अमिताभ बच्चन का एक अलग सफर हिंदी सिनेमा से शुरू हुआ।

0: सेलिब्रेटिंग द मेगा स्टार ऑफ इंडियन सिनेमा अमिताभ बच्चन साहब। फिल्म आनंद में अमिताभ बच्चन ने डॉक्टर भास्कर का रोल निभाया, लेकिन जब अमिताभ बच्चन विजय का रोल निभाया फिल्म जंजीर में द एंग्री यंग मैन, यहाँ से अमिताभ बच्चन ने अपने डेस्टिनी मानो खुद अपने हाथों से लिखने लगे। एक ऐसी गाड़ी में कदम रखा जहाँ सफलता के अलावा कुछ और नहीं था। अपने किरदार के बल पर, अपने मल्टी टैलेंटेड एक्टिंग के बल पर उन्होंने हर एक दौर में अपना नाम हिंदी सिनेमा के मंच पर, हिंदी सिनेमा के इतिहास में लिखते गए।
1: अरे भंग का रंग जमा हो चकाचक, फिर लो पान चबाए। आहा, अरे

0: वाला ओ छोरा गंगा किनारे वाला ओ छोरा गंगा किनारे वाला ओ छोरा गंगा किनारे वाला।
1: अमिताभ बच्चन एक मल्टी टैलेंटेड एक्टर तो थे ही, हर एक किरदार को बड़ी खासियत और सफलता से पेश करते गए। और यहाँ से कहा जाता है कि अमिताभ बच्चन हिंदी सिनेमा का एक पूरा अध्याय

0: ये खासियत अमिताभ बच्चन की है। अमिताभ बच्चन में खास बात ये रही कि जब भी वे बड़े पर्दे पर आते थे, हर किसी को अपने अलग अलग किरदार से चौंका जाते थे। कभी आनंद के डॉक्टर भास्कर से, तो कभी जंजीर के विजय हो, वही अभिमान के सुबीर हो, या फिर दीवार के विजय। शोले के जय से भी उन्होंने हर किसी का दिल जीत लिया और कई फिल्मों में उनका नाम विजय भी रखा गया। जहां डॉन, काला पत्थर, शहंशाह और अग्निपथ हो, इन सब फिल्मों से उन्हें बस विजेता ही विजेता प्राप्त हुआ।
1: But everybody will sing with me.
2: Okay.
1: Ready? Come on. One, two, three, four.

70 और 80 का दौर एक ऐसा दौर रहा जहां हर तरफ हिंदी सिनेमा में अमिताभ बच्चन के नाम गूंजते रहे। सब कुछ बस अमिताभ बच्चन के इर्द गिर्द रहा। हर करैक्टर को उन्होंने इतनी खासियत से बड़े पर पेश करते गए।

जब उन्होंने मोहब्बत के खूबसूरत फलसफे फिल्म सिलसिला में पेश किया तो मानो ये उनके लिए सबसे खूबसूरत और सबसे हसीन लम्हा रहा। अमिताभ बच्चन ने अनगिनत कलाकारों के साथ काम किया, लेकिन मैग्निफिसेंट रियल कपल ऑफ इंडियन सिनेमा रहा अमिताभ बच्चन और रेखा की।

अमिताभ बच्चन के किरदार के अलावा उनके दमदार आवाज ने भी हिंदी सिनेमा को चौंका दिया। अनेकों फिल्मों में एक्टिंग के अलावा उन्होंने अपने पोएटिक अंदाज से कई गाने भी हिंदी सिनेमा को दिए। हर एक किरदार को अमिताभ बच्चन ने बड़ी खूबसूरती से पेश किया, लेकिन जब कॉमेडी की बात चलती है तो अमिताभ बच्चन ने हर एक्टर को पीछे छोड़ दिया। उनकी आवाज गूंजी फिल्म लावारिस में, मेरे अंगने में तुम्हारा क्या काम है।

0: काम है हो।
1: 11 अक्टूबर ये तारीख हिंदी सिनेमा के लिए बेहद ही खास है क्योंकि अमिताभ बच्चन बना रहे हैं अपना 84th बर्थ एनिवर्सरी।

मेगास्टार अमिताभ बच्चन या फिर कह सकते हैं कि द सुनामी अमिताभ बच्चन, ये एक एक्टर नहीं, ये एक इंसान नहीं बल्कि एक फिनोमिनन है। आज भी हिंदी सिनेमा से जुड़े हुए हैं, अपने काबिलियत के बल पर हर एक नए कलाकार के लिए इंस्पिरेशन भी साबित हो रहे हैं। इस खास दिन पर अमिताभ बच्चन के योगदान के लिए उन्हें हम धन्यवाद करते हैं और ढेर सारा शुभकामनाएं भी देते हैं।

0: जिंदगी के फलसफे बेहद ही अजीब और गरीब हैं। एक तरफ अमिताभ बच्चन के जन्म दिवस के अवसर पर सेलिब्रेशन चल रही है, तो दूसरी ओर एक दुखद खबर आई। 8 अक्टूबर को पूरे हिंदी सिनेमा पर एक दुख की लहर छा गई। हिंदी सिनेमा के एक महान कलाकार इस दुनिया से दूर हो गए, नाना पाटेकर साहब। नाना पाटेकर अपने आप में एक बेहद ही यूनिक और अलग किस्म के एक्टर रहे।
1: भगवान का दिया हुआ सब कुछ है, दौलत है, शोहरत है, इज्जत है, इतना रुतबा है इस शहर में, जिस घर पर हाथ रखूं रिश्ते के लिए कोई ना नहीं कहेगा। बस एक लड़का चाहिए जो शरीफ हो, नेक हो, अच्छे खानदान का हो, जो मेरी बहन को जिंदगी भर खुश।
2: साहब, ये तो ऐसी बात हो गई कि बगल में छोरा और शहर में ढिंढोरा। मेरा अपना भांजा है, नेक है, शरीफ है, अच्छे खानदान का है।
1: वाह।
2: हाँ, ये बात है कि हैसियत में माप के बराबर के नहीं है, लेकिन इज्जतदार है। पंडित जी मुहूर्त भोरत बाद में सोचेंगे, पहले इनकी मर्जी तो मैं जानूं।
1: अरे नहीं नहीं, मेरी तो हाँ है।
2: आपकी हाँ?
1: हाँ, मेरी तो
2: मेरी भी हाँ है।
1: देखिए, जुबान दी है, मुकरने नहीं दूंगा।
2: इज्जतदार आदमी हूँ शेट्टी साहब, एक बार जबान दी मतलब।
1: आज एक भाई अपनी बहन की खुशियों की भीख मांगने आया है। मैंने जो बदसलूकी की है उसके लिए मैं हाथ जोड़कर माफी मांगता हूँ आपसे। इस गलत धंधे में रहकर शायद लोगों के आंसुओं को मैं समझ नहीं सका, उसी की सजा भुगत।

0: हर दरवाजे पर अपनी बहन के रिश्ते की ना सुन सुनकर मैं थक चुका हूँ घुंगरू जी। ये आखिरी दरवाजा है मेरी बहन की खुशियों के लिए, इसे बंद मत कीजिए।
1: पचहत्तर यानी कि 75 ईयर्स के थे जब एक हार्ट अटैक के कारण उनका निधन हो गया। उन्होंने कुछ 100 फिल्मों में काम किए जैसे अंकुश, परिंदा। फिल्म क्रांतिवीर में फिल्मफेयर ने उन्हें दिया बेस्ट एक्टर का खिताब और अनेकों अवार्ड के अलावा 3 नेशनल फिल्म अवार्ड उन्हें प्राप्त हुआ। पद्मश्री से भी उन्हें नवाजा गया और उनके जाने पर फुल स्टेट ऑनर यानी कि पूरे राष्ट्रीय सम्मान के साथ भारत ने इस भारत के बेटे को विदा किया। इस महान कलाकार को इनके योगदान के लिए श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं।
2: कैसे बताऊं मैं तुम्हें मेरे लिए तुम कौन हो? कैसे बताऊं? कैसे बताऊं मैं तुम्हें? तुम धड़कनों का गीत हो, जीवन का तुम संगीत हो, तुम जिंदगी, तुम बंदगी, तुम रोशनी, तुम ताजगी, तुम हर खुशी, तुम प्यार हो, तुम प्रीत हो, मनमीत हो। आंखों में तुम, यादों में तुम, सांसों में तुम, आहों में तुम, नींदों में तुम, ख्वाबों में तुम हो मेरी हर बात में, तुम हो मेरे दिन रात में, तुम सुबह में, तुम शाम में, तुम सोच में, तुम काम में। मेरे लिए पाना भी तुम, मेरे लिए खोना भी तुम, मेरे लिए हंसना भी तुम, मेरे लिए रोना भी तुम, और जागना सोना भी तुम। जाऊं कहीं, देखूं कहीं, तुम हो वहां, तुम हो वहीं।

0: 819 किलोहर्ट्ज़, ये है रेडियो मॉरिशस। रेडियो मॉरिशस।
1: अपनी घड़ी मिला लीजिए, इस वक्त शाम के ठीक 6 बजे हैं।

11 अक्टूबर 2026 की तारीख, स्वागत है आप सभी का 6 बजे के समाचारों में। डालते हैं नजर सबसे पहले आज की सुर्खियों पर। गोली लगने से घायल एलोजी टोमा

0: की सेहत पर सबकी नजरें टिकी हुई हैं। शुक्रवार रात हुई इस गंभीर घटना के दो दिन बाद आज विक्टोरिया अस्पताल में स्वास्थ्य मंत्री की अध्यक्षता में एक उच्च स्तरीय बैठक लगाई गई। मॉरिशस के स्पेशलिस्ट डॉक्टरों की एक टीम लगातार उनकी देखभाल कर रही है, जबकि भारत से 7 डॉक्टरों के आने का है इंतजार। कोलोवियर में गोली लगने से घायल एलोजी टोमासा के मामले में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने निष्पक्ष और स्वतंत्र न्यायिक जांच की सिफारिश की है। आयोग ने बताया है कि हथियार का इस्तेमाल केवल अंतिम उपाय के तौर पर होना चाहिए। इस बीच अस्पताल में भर्ती एलोजी के परिवार को उनकी सेहत में सुधार की उम्मीद है। इस मुश्किल घड़ी में रिश्तेदार, पड़ोसी और दोस्त परिवार उनके साथ खड़े हैं। मॉरिशस में आज घट स्थापना और माता शैलपुत्री की पूजा के साथ शारदीय नवरात्र का शुभारंभ हुआ है। मंदिरों में विशेष पूजा अर्चना और श्रद्धालुओं में भक्ति का वातावरण। भारत में भी भगवती मां दुर्गा के जयकारों के साथ 9 दिनों की आराधना शुरू हुई है। नवरात्रें मां के 9 स्वरूप और हर और आस्था तथा शक्ति की उपासना का है उत्सव। और विदेश में नेपाल में बूढ़ी गंडकी नदी में अचानक आई बाढ़ से भारी तबाही हुई है। कम से कम 5 लोग लापता हैं, जबकि करीब 36 मकान बह गए हैं और 4 पुलों को पहुंचा है नुकसान। नमस्कार और आदाब। सायंकालीन समाचार बुलेटिन में आप सभी का हम हार्दिक स्वागत करते हैं। शुरुआत करते हैं स्थानीय खबरों के साथ, समाचारों को देते हैं विस्तार। जिस तरह से हमने सुर्खियों में इस बात का उल्लेख किया है कि गोली लगने से घायल एलोजी टोमास की सेहत पर सबकी नजरें टिकी हुई हैं। शुक्रवार रात हुई इस गंभीर घटना के 2 दिन बाद आज विक्टोरिया अस्पताल में स्वास्थ्य मंत्री की अध्यक्षता में एक उच्च स्तरीय बैठक लगाई गई। बैठक में एलोजी टोमास की मौजूदा हालात और उनके इलाज पर बात हुई। मॉरिशस के स्पेशलिस्ट डॉक्टरों की एक टीम लगातार उनकी देखभाल कर रही है। इस बीच इलाज में मदद के लिए भारत से 7 डॉक्टरों के आने का इंतजार है। एलोजी टोमास को बेहतर से बेहतर इलाज मुहैया कराने के लिए चिकित्सा स्तर पर विशेष प्रयास किए जा रहे हैं। यासिन दैनमामुद की रिपोर्ट पर करुणा लालू का विवरण।
1: सांसदों, स्वास्थ्य अधिकारियों और चिकित्सा विशेषज्ञों ने एक बैठक में 27 वर्षीय एलोजी टोमा की स्वास्थ्य स्थिति का जायजा लिया, जो शुक्रवार रात को एक पुलिसकर्मी की गोली से घायल हो गई थी। भारतीय विशेषज्ञों के आने तक मॉरिशियन डॉक्टर उनकी सेहत पर कड़ी निगरानी रख रहे हैं। मंत्री अनिल बेचू ने कहा, कल रात से मॉरिशियन डॉक्टरों का संपर्क आने वाली भारतीय टीम के साथ हैं। उनकी मांग पर ही कल कुछ टेस्ट किए गए और स्कैनिंग भी। मरीज की हालत गंभीर है लेकिन स्थिर है। 7 स्पेशलिस्टों की एक टीम उसकी देखभाल कर रही है उन डॉक्टरों की सलाह पर। उनके इलाज से जुड़े फैसले विभिन्न विशेषज्ञों के बीच विचार विमर्श के बाद सामूहिक रूप से लिए जा रहे हैं। मॉरिशस में हमारे स्पेशलिस्ट भी सतर्क हैं, मरीज की देखभाल कर रहे हैं। सोमवार को डॉक्टरों के आगमन से ये तय करेंगे कि क्या प्रणाली अपनाई जाएगी। स्पाइन सर्जन का हमसे बात हुई थी, हेल्थ डायरेक्टर और अन्य कॉलीग्स के साथ भी, जिस तरीके से सर्जरी की जाएगी उससे हमें संतोष है। वही स्वास्थ्य सेवा निदेशक ने मरीज के मौजूदा स्वास्थ्य स्थिति के बारे में विस्तृत जानकारी दी। डॉक्टर अश्वमेध सिंह दिना सिंह ने कहा, ब्रेन में इन्फ्लामेशन है, इसलिए उसे निकाल कर कहीं नहीं ले जाया जा सकता। हमारे लिए अभी भी उसकी स्थिति स्थिर है, कोई ब्लीडिंग नहीं, सिटी स्कैन के बाद समीक्षा की गई, दो बार सिटी स्कैन हुई, धमनी में भी कोई रक्तस्राव।

0: भाव नहीं, सब सामान्य हैं, केवल जबड़ा जहां गोली लगी वहां चोट है।
1: Tout ça fait normal. Il n'y a aucun problème au niveau de ce artère, sauf que ça a un problème au niveau de côté. Ben là, tu es rentré sur la mâchoire et ça, c'est nous capables de finir quand ben, l'équipe est rentrée. Nous pouvons finir faire ça bien, nous pouvons régler les et nous pouvons guetter un coup de souvent damage après quand nous ouvrons. Ce qui scan montré, c'est simplement nous sommes capables de dire de toute façon l'eau là.
0: रीढ़ की हड्डी और तंत्रिका तंत्र के विशेषज्ञ सर्जन, एक इंटरवेंशनल न्यूरोलॉजिस्ट और गहन चिकित्सा विशेषज्ञ सहित अन्य चिकित्सक शामिल होंगे। सोमवार को भारतीय टीम के पहुंचने पर आगे की चिकित्सा प्रक्रियाएं शुरू किए जाने की संभावना है।
2: समाचारों को आगे बढ़ाते हैं। प्रधानमंत्री का देश के नाम संदेश, खासकर कॉन्लुवियर इलाके को लेकर के देश में पानी की कमी और कॉन्लुवियर में हुई गोलीबारी की घटना के बीच प्रधानमंत्री ने जनता से शांति, संयम और एकजुटता बनाए रखने की अपील की है। अपने संदेश में प्रधानमंत्री ने शुक्रवार रात की घटना को अस्वीकार्य बताया है और कहा कि कानून से ऊपर कोई नहीं है। उन्होंने भरोसा दिलाया है कि मामले की जल्द और पूरी जांच होगी ताकि घटना के सही हालात सामने आए और जिम्मेदार लोगों की पहचान हो सके। प्रधानमंत्री ने बताया कि वे लगातार पुलिस आयुक्त के संपर्क में हैं और स्थिति पर नजर रख रही हैं। उन्होंने रोड्रिक्स का अपना दौरा भी रद्द कर लिया है। एलोजी टोमास के पति जोनाथन टोमास से भी बातचीत कर उन्होंने परिवार को हर संभव समर्थन का भरोसा दिलाया है और एलोजी के जल्द स्वस्थ होने की कामना की। प्रधानमंत्री ने पुलिस से कानून व्यवस्था बनाए रखते हुए संयम और सूझबूझ से काम लेने को कहा है। साथ ही उन्होंने माना कि इस घटना को लेकर लोगों का गुस्सा स्वाभाविक है, परंतु इसी से नई हिंसा या तनाव पैदा नहीं होना चाहिए। एलोजी टोमास के परिवार के प्रति पोर्टलुई के बिशप जो मिकाएल जुगन ने अपनी संवेदना और समर्थन व्यक्त किया। रोम से भेजे अपने संदेश में उन्होंने कहा कि वे परिवार को अपनी प्रार्थनाओं में याद कर रही हैं। एलोजी का कल ऑपरेशन होना है। इस कठिन घड़ी में बिशप ने पूरे मॉरिशस के लिए भी प्रार्थना की है ताकि सभी को हिम्मत, शांति और उम्मीद मिल सके। उनके संदेश को सुनते हैं।
3: Notre pays passe par un moment d'épreuve, de difficulté et de souffrance, et que mon premier à prière, mon prier pour la famille Thomas, surtout pour Madame Elodie Thomas, qui est capable de retrouver la santé, qui va nous prier pour un médecin qui peut bien intervenir pour qu'il capable redonner sur la santé. Nous prions également pour que nos pays soient capables de vivre dans la paix, la justice et la vérité, malgré qu'ils sont loin. Mais tout le monde a prié pour le peuple mauricien qui nous connaît, qui est un peuple qui a aussi ce désir de paix et de justice sociale, qui nous prie ensemble en ce moment.
2: और जैसे कि हमने इस बात का उल्लेख किया है सुर्खियों में कि राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग कॉन्लुवियर में गोली लगने से घायल 27 वर्षीय एलोजी टोमास के मामले पर करीबी नजर रख रहा है। आयोग ने फिलहाल घटना के तथ्यों पर टिप्पणी करने से इनकार किया है, परंतु याद दिलाया है कि हथियार का इस्तेमाल केवल अंतिम उपाय के तौर पर होना चाहिए। आयोग ने मामले की जल्द निष्पक्ष और स्वतंत्र जांच के लिए रोजिल जिला अदालत में न्यायिक जांच शुरू करने की सिफारिश की है, जिसके नतीजे सार्वजनिक किए जाएं और साथ ही राष्ट्रपति की शांति और संयम बनाए रखने की अपील दोहराते हुए आयोग ने नागरिकों से शांतिपूर्ण ढंग से अपनी बात रखने और कानून लागू करने वाले अधिकारियों से मानव जीवन का सम्मान करने की अपील की है। कॉन्लुवियर में एलोजी टोमास के परिवार के लिए हर गुजरता पल चिंता और बेचैनी से भरा है। शुक्रवार रात गोली लगने से घायल एलोजी अब भी अस्पताल में भर्ती हैं। घर में उनकी कमी गहराई से महसूस की जा रही है और परिवार को अस्पताल से किसी

0: अच्छी खबर का इंतजार है। इस मुश्किल घड़ी में रिश्तेदार, पड़ोसी और दोस्त परिवार का सहारा बनी हुई हैं। पूरे इलाके में एकजुटता का माहौल है, परंतु अपनों की चिंता के बीच परिवार में उम्मीदें एलुजी के जल्द स्वस्थ होने पर टिकी हैं। ज्यादा जानकारी इस रिपोर्ट में।
1: एलुजी तुमा के अभी भी अस्पताल में भर्ती होने के कारण पूरा इलाका सांस रोके हुए हैं। कोलुवियो में इस त्रासदी से गहरे आहत उनके करीबियों के इर्द गिर्द एकजुटता का माहौल बन रहा है। भावनाओं, चिंताओं और इंतजार के बीच परिवार उम्मीद बनाए रखने की कोशिश कर रहा है।
2: Et beaucoup de monde peut venir pour moi, surtout pour que les posts qui peuvent dérouler sur Facebook, sur les social media, tout ça là. Ça donne moi courage, hein, mon petit petit aussi. Nous avons la tête aux épaules pour après nous guetter qui nous capable faire plus devant. Mais priorité, la santé, mon madame. Et là, à l'heure actuelle, sur l'état, l'instable, hein, l'instable, ben docteur qui peut venir, peut déjà faire un suivi au lit depuis des hauts.
1: शुक्रवार शाम से ही रिश्तेदार, पड़ोसी और दोस्त परिवार को सहारा देने और ये सुनिश्चित करने के लिए बारी बारी से मदद कर रहे हैं।
2: बेबे ली प्लूटू कोरेक्ट ली कोरेक्ट ली पापे वो दोनों को पेची पापे पांकोट में एंडेको ली डिमांडे मामा मामा कमो गिट्सा मुलेकिया ग्रो वी में बिब्ज़ा रिस्फो बिब्ज़ा कोज मांची ओब्लिजे बिब्ज़ा जली दिना ट्रावाई Je me disais ça les comprend et je me disais un grand merci aussi parce qu'il y a Gordy sur l'école qui va nous aussi de moins de soutien.
3: Signez des ans, il est vrai qu'il est pas encore comprend mais des fois quand on peut devenir manger, soit on peut belle, il peut finir crier ma maman, soit il peut dire moi where is mommy, mais mon pas car me disais mais il pouvait être chez maman. Mon fait les gestes chico, mais juste pour qu'il mange, il pas pense l'eau là. Moi aussi, moi besoin d'attendre les épaules pour qu'il me casse pour lui, me tenir. C'est gêné mon maman, mon papa, mais il pas évident. C'est un choc. Il pas. C'est presque un trauma en fait, parce que personne, même la police même les cas, il pas gai droit permettre lui faire ça.
1: Lekin is samarthan ke bavjood, kai baar bhavnaen haavi ho jati hain. Elogie ki kami. गहराई से महसूस की जा रही है।
4: Au pas pétant de transport vini ailleurs pétant était un peu allongé mon bébé s'est pété maillot jean gain coup de balle mon dieu ça l'est là mon pas connu comme était mon n'est plus comment comme était vous avez senti d'autres qualités elle m'a fini à battre là.
1: अधिक आश्वस्त करने वाली खबरों का इंतजार करते हुए परिवार अस्पताल से आने वाले अगले समाचारों और उनकी स्वास्थ्य स्थिति में सुधार की जानकारी पर अपनी नजरें टिकाए हुए हैं।
0: समाचारों को आगे बढ़ाते हैं। पानी की कमी से निपटने के लिए सेंट्रल वाटर अथॉरिटी ने एक नई योजना शुरू की है। जिन परिवारों के घरों में पानी की टंकी नहीं है, वे कल से सेंट्रल वाटर अथॉरिटी के सैंपल मुख्य कार्यालय या देश भर में उसके किसी भी कार्यालय में अपना नाम दर्ज कर सकते हैं। पंजीकरण सुबह 9 बजे से लेकर दोपहर के 3 बजे तक होगा। जिनके परिवार के नाम ए से एम तक के अक्षरों से शुरू होता है, वे सोमवार से बुधवार तक आ सकते हैं, जबकि एन से जेड तक के अक्षरों वाले परिवार गुरुवार व शुक्रवार को पंजीकरण करा सकते हैं। साथ ही अपने साथ पहचान पत्र और CWA का बिल लाना जरूरी है। अधिक जानकारी के लिए आप सेंट्रल वाटर अथॉरिटी के नंबर पर संपर्क स्थापित कर सकते हैं। जिस प्रकार से हमने सुर्खियों में इस बात का उल्लेख किया है कि मां के जयकारों से गूंजते मंदिर, भक्ति में डूबे श्रद्धालु और वातावरण में आस्था की एक नई उमंग, आज से शारदीय नवरात्रि का पावन पर्व शुरू हो गया है। पहले दिन शुभ मुहूर्त में घट

स्थापना और कलश स्थापना के साथ भगवती माँ दुर्गा का आह्वान किया गया है। अगले 9 दिनों तक माँ भगवती के 9 दिव्य स्वरूपों की आराधना होगी, कहीं व्रत और उपवास, कहीं भजन कीर्तन, तो कहीं विशेष पूजा अर्चना के साथ मां का आशीर्वाद पाने की कामना। मां शैलपुत्री को

0: एक धार्मिक पर्व नहीं अपितु सृष्टि की मूल ऊर्जा, नई शक्ति और नारी शक्ति तथा चेतना की आराधना का महापर्व है। भगवती माँ दुर्गा के नौ स्वरूप जीवन के अलग अलग गुणों और आध्यात्मिक शक्तियों का प्रतीक माने जाते हैं। परंतु एक गहरा प्रश्न है, माँ दुर्गा को ही आदि शक्ति क्यों कहा गया है? हिंदू दर्शन में शक्ति का वास्तविक अर्थ क्या है और देवी की उपासना के लिए नवरात्रों का विशेष महत्व क्यों है? इन प्रश्नों के उत्तर हमें सनातन धर्म के प्राचीन ग्रंथों, धार्मिक मान्यताओं और उस आध्यात्मिक चिंतन से मिलते हैं जहां शक्ति को समस्त सृष्टि का आधार माना गया है, और इसी पर विस्तार दे रही है हमारी सहयोगी अदिति अवतार।
1: हिंदू दर्शन में शक्ति का अर्थ केवल शारीरिक बल या सामर्थ्य नहीं है, ये उस मूल ऊर्जा का प्रतीक है जिससे सृष्टि का निर्माण, उसका संचालन और परिवर्तन संभव माना जाता है। इस दृष्टिकोण के अनुसार माँ दुर्गा केवल एक देवी नहीं बल्कि साहस, सुरक्षा, न्याय, करुणा और अधर्म के विरुद्ध संघर्ष करने की दिव्य क्षमता का प्रतिनिधित्व करती है। उनके अनेकांत विभिन्न शक्तियों और दायित्वों का प्रतीक है, जबकि सिंह या बाघ पर उनका विराजमान होना निर्भयता, आत्मविश्वास और कठिन परिस्थितियों पर नियंत्रण का संदेश देता है। नवरात्रि से जुड़ी प्रमुख धार्मिक कथाओं में देवी दुर्गा और महिषासुर के बीच युद्ध का विशेष स्थान है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार महिषासुर के अत्याचारों से देवता और समस्त लोग त्रस्त थे, तब विभिन्न देवताओं की शक्तियों के एकत्र होने से देवी दुर्गा का प्राकट्य हुआ था।
2: दुर्गा जी का सबसे महाशक्ति का प्रादुर्भाव उस समय हुआ, माने कि उल्लेख तब हुआ जब महिषासुर जैसे महादैत्य का वध हुआ। महिषासुर को हम लेंगे सिर्फ राक्षस के रूप में नहीं, महिषासुर को लेंगे हम जो हमारे अंदर क्रोध, लोभ, अहंकार, मद मोह है, उसको त्याग करके जब कोई विजय प्राप्त करता है उसको कहते हैं महिषासुर का वध के रूप में। जैसे दुर्गा सप्तशती में कहा गया अर्घरा स्त्रोत्र में, रूपम देही जयम देही यशो देही द्विशोजी, कि हे माता जयम देही, मुझे विजय प्राप्त कराए, मेरे अंदर जो शत्रु, जो पाप हैं, जो दोष हैं, उसको मैं नाश करके मैं विजय प्राप्त कर सकूँ। विजय के बाद ही, पवित्रता के बाद ही भक्ति और शक्ति की प्राप्ति होती है।
1: अगले 9 दिनों के दौरान देश के मंदिरों में माँ दुर्गा के 9 स्वरूपों की विधिवत पूजा की जाएगी। आज शाम की कलश स्थापना से पूर्व सुबह मंदिरों में विशेष तैयारियां पूरी की गईं।
3: जैसे हमने नवरात्रि आवा था, भक्ति भाव से 9 दिन के व्रत, 10वां दिन विसर्जन होला, पूर्णावती छाक के सब हमने के नारी जाति के शक्ति है कि हमने 9 दिन के व्रत रखी ला जा।
4: ये नवरात्रि एक संदेश पहुंचाता है कि संयम बनाए रखने के लिए ये व्रत, ये सिर्फ नमक खाना नहीं है, वो अपने आप का जो आत्म संयम बनाने का एक माध्यम है।
5: दुर्गा पूजा जो है सिर्फ 9 दिनों का नहीं है, बल्कि हम जो है शक्ति का रूप जो हम कहते हैं लाफोस जिविन, वो हमारी माताएं भी, हमारी बहन और हर स्त्री में है शक्ति, और उनका जो सम्मान जो है उनका करना चाहिए रोज।
1: इस पर्व का केंद्रीय संदेश ये है कि सृजन, संरक्षण और परिवर्तन की शक्ति जीवन का अभिन्न अंग है। देवी दुर्गा की आराधना के माध्यम से श्रद्धालु न केवल दैवीय आशीर्वाद की कामना करते हैं, बल्कि साहस, आत्मबल, न्याय और सद्भाव जैसे गुणों को अपने जीवन में अपनाने का संकल्प भी लेते हैं।
0: मॉरिशस के साथ साथ भारत में भी शारदीय नवरात्र की भक्ति और उल्लास का वातावरण है। कहीं मंत्रोच्चार के साथ विशेष पूजा अर्चना और कहीं भजन तथा पारंपरिक उत्सवों के जरिए माँ आदि शक्ति की आराधना। नवरात्र के पहले दिन माँ शैलपुत्री की पूजा के साथ 9 दिनों की पवित्र साधना शुरू हुई है। अलग अलग परंपराएं, परंतु श्रद्धा एवं समर्पण का एक ही भाव, माँ जगदम्बा की कृपा और आशीर्वाद की कामना। सिजिया मिल मराठी मंडली द्वारा आयोजित आज गुंडल पूजा संपन्न की गई है, और ये पूजा शक्ति की देवी भवानी को समर्पित है। ये अनुष्ठान दुर्गा पूजा के प्रारंभ में किया के अनुष्ठान में किया जाता है। ज्यादा जानकारी

0: विधिमा सिबरन के साथ।
1: पहली प्रार्थनाएं गूंजने लगी हैं। भक्ति और आस्था से भरे माहौल में भक्तगण देवी भवानी को नमन करने के लिए एकत्रित हुए।
2: ओम श्री महालक्ष्मी।
1: गोंधल पूजा, जो कि मराठी संस्कृति की एक परंपरा है, कुछ परिवारों के आध्यात्मिक जीवन में एक विशेष स्थान रखती है। चित्रा दौलतराव बताती हैं, पांच स्त्रियां हैं जो इन पांच तत्व का प्रतिनिधित्व करती हैं, जैसे मिट्टी, पानी, वायु। भवानी माँ की पूजा से हमने शुरुआत की, जो माँ दुर्गा का प्रतिनिधित्व करती है। ये एक ऐसा समारोह है जिसमें चढ़ावा, भक्ति गीत और पवित्र अनुष्ठान विशेष रूप से शामिल होते हैं। इनमें जोगवा भी शामिल है, जिसमें चावल जैसी खाद्य सामग्री बांटी जाती है, जो एकजुटता के महत्व को याद दिलाती है। बालचंद्र गोविंद कहते हैं, जब हमारे पूर्वज महाराष्ट्र से मॉरिशस आए, तब उन्होंने अपने साथ ये रीति रिवाज लाए। आज मॉरिशस में छठी पीढ़ी इस रीति रिवाज को बखूबी से निभा रही है। ये एक लम्हा है आई भवानी से जुड़ने का। पारंपरिक गीतों और वाद्य यंत्रों की धुन पर भक्तगण इस आध्यात्मिक उत्सव में भाग लेते हैं, जिसका समापन महाआरती के साथ होता है। ये एक ऐसी परंपरा है जो परिवारों को एक साथ लाती है और पूर्वजों के रीति रिवाजों से जुड़ने के इस जीवंत संबंध को बनाए रखती है।
0: इलाकाई स्तर पर रोड्रिग्स कल 12 अक्टूबर को अपनी स्वायत्तता की 24वीं वर्षगांठ मनाएगा। इस अवसर पर कों जू रॉय के जॉन डैनियल ऑंड्रे स्टेडियम में आधिकारिक समारोह आयोजित किया जाएगा। परंतु इन 24 वर्षों में रोड्रिग्स के लोगों की जिंदगी में क्या बदलाव लाए हैं और भविष्य को लेकर उनकी क्या उम्मीदें हैं, इन्हीं सवालों के साथ हमारी एक टीम पहुंची द्वीप की राजधानी पो माचुरिन, जहां स्थानीय लोगों ने अपनी रोज़मर्रा की जिंदगी, परेशानियों और उम्मीदों के बारे में खुलकर बात की है। आशीष देवी, मेगन पुन्नापा नायकन और रोड्रिग्स की एक टीम पेश है ये रिपोर्ट, विवरण विधिमा सिवरन का।
1: पोमाचुरिन के बाजार में खासतौर पर रोड्रिग्स वासियों के स्थानीय उत्पादों के लिए समर्पित जगह काफी लोकप्रिय बनी हुई है। मगाली लुई और उनकी माँ यहाँ कई वर्षों से काम कर रही हैं।
3: उस स्पेशलिटी से क्या एग्जैक्टली हुआ?
4: नाटो रोड्रिगेज। ये भी लंबे समय से है, देखो मैंने 12 ans मैंने कमांस फिर है, से ट्रेडिशन फैमिलियर। से मो मामा किस कमांस फिर सा वो। ले ला मो मैंने पढ़ा बो।
1: यहाँ लगभग रोजाना करीब 100 सब्जी विक्रेता जुटते हैं। समय के साथ बने भरोसे और पहचान के बदौलत यहाँ के हस्तनिर्मित उत्पाद हर किसी का ध्यान अपनी ओर खींच लेते हैं। स्वायत्तता के 24 वर्षों में जिन निवासियों से मुलाकात हुई, वे बताते हैं कि द्वीप ने कई क्षेत्रों में प्रगति की है। सबसे स्पष्ट और प्रत्यक्ष बदलाव बुनियादी ढांचे के क्षेत्र में देखा गया है।
4: Nous une femme forte, un monde qui comme une liberté pour nous.
1: कों जू रॉय स्टेडियम में आयोजित होने वाले समारोह की तैयारियां जब अंतिम चरण में हैं, वहीं आने वाले वर्षों को लेकर आम जनता में भी उम्मीदें काफी बढ़ गई हैं।
5: Nous développer, développer l'aéroport, nous le pont. Ça premier mon pensée mon pays parce que gros bateau passe à côté nous là, les Pierre Maurice mais c'est bien même, mais c'est ça autonomie.
3: Qui ont envie de trouver dans Oulilma.
6: Comment nous sommes contents, comment nous sommes jeunes, il y a un travail, tout ça là. Après, il y a un loisir.
7: L'aéroport, le port, c'est une priorité pour nous. Nous avons besoin de l'aéroport pour nous gagner plus. Beaucoup de touristes. Nous avons le port aussi plus grandi.
8: Moi, quand on a la nature, Rodrigue, comment il y a beaucoup de réserves, si je ne me trompe pas. J'ai fait ça, comment dire, il y a encore un encore dans Rodrigue, parce que beaucoup de pandémies partout dans Rodrigue.
1: Ils sont vers Yeltsin. bizet et notre tout pour faire un sel, yani

0: एकजुट होकर काम करना होगा के विषय के तहत आयोजित किए जा रहे हैं। 12 अक्टूबर 2002 से इस द्वीप के निवासियों के दैनिक जीवन को आकार देने की जिम्मेदारी रीजनल असेंबली पर है।
1: हिंदी केवल एक भाषा नहीं, हमारी संस्कृति, हमारी पहचान और पीढ़ियों से जुड़ी एक अनमोल विरासत है। इसी विरासत को आगे बढ़ा रही नई पीढ़ी की प्रतिभा को आज विशेष सम्मान मिला है। हिंदी दिवस के अवसर पर हिंदी स्पीकिंग यूनियन ने साल 2025 की स्कूल सर्टिफिकेट एवं हाई स्कूल सर्टिफिकेट परीक्षाओं में हिंदी भाषा और साहित्य में शानदार प्रदर्शन करने वाले छात्रों को पुरस्कृत किया। ज्यादा विस्तार इस रिपोर्ट में।
0: इन सम्मानों और पुरस्कारों के पीछे वे छात्र हैं जिन्होंने हिंदी सीखने का विकल्प चुना है, एक ऐसी भाषा जिसे वे शब्दों के माध्यम से और साथ ही पाठों के जरिए खोज रहे हैं।
2: ये एक महत्वपूर्ण भाषा है जो मेरे परिवार ने इस पे बहुत सारा फोकस डाला था कि मैं ये पढ़ूँ ताकि मैं अपने संस्कृति और परिभाषा के खातिर ये ले पाऊँ ये सब्जेक्ट।
3: हिंदी मेरे लिए बहुत आवश्यक है क्योंकि तुलसीदास जैसे महान व्यक्तियों ने मुझे समझने में सहायता किया और अन्य शब्दावली से परिचित किया, जैसे राम नाम की महिमा, उनकी शक्ति, उनका प्रभाव जैसे।
0: नई पीढ़ियों तक हिंदी भाषा पहुंचाना और इसे आगे बढ़ाना एक महत्वपूर्ण चुनौती बना हुआ है।
4: आने वाले समय में आज ही हम देख रहे हैं कि भारत तो एक राष्ट्रगुरु बन रहा है, हिंदी का महत्व बढ़ता जा रहा है और हमें बच्चों को हिंदी को अपनाने के लिए प्रेरित करना है। ये बच्चे न केवल हिंदी पढ़ रहे हैं, वे आने वाले लोगों को, उनके जो दोस्त हैं उनको भी प्रेरित कर रहे हैं कि वे भी हिंदी पढ़ें। तो हिंदी संगठन चाहता है कि अधिक से अधिक युवा हिंदी के महत्व को समझें, उसको दोयम दर्जे का ना समझें, क्योंकि हिंदी बहुत ही महत्वपूर्ण है।
0: शिक्षा के स्तर पर चुनौती अधिक से अधिक बच्चों को हिंदी की ओर आकर्षित करने की भी है। शिक्षा मंत्री उन उपायों का जिक्र करते हैं जो बच्चों को इस भाषा को सीखने के लिए प्रोत्साहित कर सकते हैं। शिक्षा मंत्री डॉक्टर महेंद्र गंगा प्रसाद बताते हैं।
5: यही मांग करूंगा शिक्षकों से कि वो लोग बच्चे को हिंदी मूवीज जो हैं, हिंदी सीरियल्स जो होते हैं, हिंदी म्यूजिक जो है, उसके माध्यम से इन बच्चों को हिंदी की तरफ लाए ताकि बच्चों का रुचि हिंदी की तरफ और जागृत हो सके।
0: पुरस्कारों और सम्मानों से परे ये समारोह युवा पीढ़ियों तक हिंदी भाषा और इसकी साहित्यिक समृद्धि को पहुंचाने के महत्व की याद दिलाता है।
1: और विदेश स्तर पर जो आज सुर्खियों में है, नेपाल में बुध ही गंदा की नदी में अचानक आई बाढ़ से भारी तबाही हुई है। कम से कम 5 लोग लापता हैं, जबकि 36 मकान बह गए और 4 पुलों को नुकसान पहुंचा है। अधिकारियों के अनुसार पहाड़ से मलबा गिरने के कारण नदी का बहाव रुक गया था, परंतु पानी का दबाव बढ़ने से ये रुकावट टूट गई और अचानक बाढ़ आ गई। सेना ने हेलीकॉप्टर और जमीनी बचाव दल की मदद से 49 लोगों को सुरक्षित निकाला। नदी किनारे बसे कई गांवों से लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया। बिजली और संचार व्यवस्था को भी नुकसान हुआ है, जबकि प्रभावित इलाकों में बचाव अभियान अभी भी जारी है। और अंत में मौसम का हाल। आम हालत, पूर्व की ओर से बादलों का एक झुंड आज रात से हमारे स्थानीय मौसम को प्रभावित करने लगेगा, जबकि दूसरी ओर मास्केरेंस के दक्षिण पश्चिम से एक जोरदार एंटीसाइक्लोन होने की वजह से हमारे स्थानीय मौसम और प्रभावित होने वाला है। अगले 24 घंटों के लिए पूर्वानुमान, आज रात के दौरान थोड़े से बादल घिर आएंगे, खासकर पूर्वी ढलानों पर हल्की सी बारिश होगी और साथ ही साथ सेंट्रल प्लेटो पर भी बारिश बरकरार रहेगी। कल सुबह पूर्व दक्षिण तथा सेंट्रल प्लेटो पर हल्की सी वर्षा होगी और हवा पूर्व की ओर से 20 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से बहेगी। प्रवाल रेखा के उस पार लगभग 2 मीटर वाली लहरें उठेंगी, अतः दूर समंदर में न जाने की मांग की जाती है, खासकर दक्षिणी पश्चिमी लगूनों के उस पार। तापमान, सेंट्रल प्लेटो पर न्यूनतम तापमान 16 से 18 डिग्री सेल्सियस के बीच और अधिकतम तापमान 23 से 25 डिग्री सेल्सियस के बीच। तटवर्ती इलाके पर

न्यूनतम तापमान 20 से 22 डिग्री सेल्सियस के बीच रहेगा और अधिकतम तापमान 27 से 30 डिग्री सेल्सियस के बीच। आज सूर्यास्त 6:10 पर, जबकि कल सूर्योदय 5:42 पर।

तो देश विदेश की इन्हीं खबरों व मौसम संबंधी जानकारियों के साथ ही यह सायंकालीन समाचार बुलेटिन समाप्त हो चला। आप लोगों ने ध्यान दिया, इसके लिए धन्यवाद। तकनीकी मदद के लिए हम फैजान को धन्यवाद देना चाहेंगे। हमारे साथ जुड़े रहिए, थोड़ी देर में आप सुन पाएंगे शोक समाचार। Your news on NBC Play.

0: आइए शोक समाचार सुनते हैं शांति निकेतन रोड रोहसनुआ में। शांति निकेतन रोड रोहसनुआ में 64 साल की 64 years old की श्रीमती बिदवंती रामदस, श्रीमती बिदवंती रामदस पैदाइशी नाम राम बख्श और जिन्हें सब लोग रूपवंती के नाम से भी जानते थे, उनकी मृत्यु हो गई है। उनकी अर्थ कल सुबह 9 बजे उनके बेटे श्री आतिश कुमार रामदस के घर शांति निकेतन रोड होशनुआ से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए होशनुआ की शमशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमेशन टुमारो एट 9 AM। नंबर 33 जोसेफ जुबेया स्ट्रीट क्यूपिप में, नंबर 33 जोसेफ जुबेया स्ट्रीट क्यूपिप में 84 साल की 84 years old की मिसिज सरा बीबी जुमन, मिसिज सरा बीबी जुमन पैदाइशी नाम सकाबत और जिन्हें सब लोग फरीदा के नाम से भी जानते थे, वंतकाल कर गई हैं। उनका जनाजा कल दिन के 10 बजे उन्हीं के घर नंबर 33 जोसेफ जुबे स्ट्रीट क्यूपिप से उठा निकाल कर दफनाने के लिए फिनिक्स का कब्रस्तान ले जाया जाएगा। फ्यूनरल टुमारो एट 10 AM। एडीसी रोड पिछिरा फ्रेमें 45 साल के 45 years old के श्री मित्रानंद जंडू जिन्हें सब लोग कुलुस के नाम से भी जानते थे, उनकी मृत्यु हो गई है। उनकी अर्थी कल दिन के साढ़े दस बजे उनकी माँ श्रीमती बिंता जंडू के घर एडीसी रोड पिछिगाफ्रे से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए इलाके की शमशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमेशन टुमारो एट 10 AM। मिशन क्रॉस रोड लाल माटी में 64 साल के 64 years old के श्री जयराज सुकवारिया जिन्हें सब लोग विवेक के नाम से भी जानते थे, उनकी मृत्यु हो गई है। उनकी अर्थी कल दोपहर के तीन बजे उनकी पत्नी श्रीमती कविता सुकवारिया के घर मिशन क्रॉस रोड लालमाटी से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए लावोंचुए की शमशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमेशन टुमारो एट 3 PM। सीते सेंट बे में 79 years old की श्री गोविंदन रामा जिन्हें सब लोग राजन रुगाई के नाम से भी जानते थे, उनकी मृत्यु हो गई है। उनकी अर्थी कल दोपहर के दो बजे उनकी पत्नी श्रीमती शोभा रामा के घर सीते सेंटुबे से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए गांव के शमशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमेशन टुमारो एट 2 PM। इन सभी शोकग्रस्त परिवारों के प्रति हमारी गहरी संवेदना है।
1: You are listening to your RM3 Manoranjan Radio.
2: Your kind of music.

0: All day, all night, right here on your one and only station.
1: शाम के 6:37 हुए हैं। नमस्कार मेरे प्यारे श्रोताओं, आप सभी का स्वागत है। आप जुड़े हुए हैं रेडियो मॉरिशस रेडियो मनोरंजन के साथ, जी हाँ, और एम फ्री रेडियो के साथ, और आपका अपना कार्यक्रम नई सोच, जहाँ हम बात करेंगे जिंदगी की खुशियों की, रिश्तों की और उन सपनों की जिन्हें पूरा करने का हौसला हम सबके अंदर है। तो दोस्तों, ज़िंदगी में हर सुबह हमें एक नया अवसर देती है। याद रखिए, परिस्थितियाँ चाहे कितनी भी कठिन हो, लेकिन हम अगर हमारी सोच सकारात्मक है तो हम हर मुश्किल का सामना कर सकते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं आगे और गीतों की मिठास और सुंदर विचारों के साथ अपने इस आधे घंटे को खास बनाते हैं। नितिन मुकेश की आवाज़ में ये गाना सुनते हैं।

0: नहीं सो।
1: प्यारे दोस्तों, कभी कभी हम दूसरों की बातों को इतना महत्व देते हैं, लगते हैं कि अपनी ही क्षमता को भूल जाते हैं। कोई कहता है तुमसे नहीं होगा, कोई कहता है तुम्हारा सपना बहुत बड़ा है, लेकिन याद रखिए, आपकी ज़िंदगी का फैसला दूसरों की सोच नहीं, आपकी मेहनत और आपका विश्वास करेगा। आज खुद से एक वादा कीजिए, मैं कोशिश करना नहीं, लेकिन क्योंकि मेरी जो मंजिल है, मेरी हिम्मत का इंतज़ार कर रही है।

चलिए इसी के साथ आज का ये प्रोग्राम नई सोच प्रोग्राम यही समाप्त हो चला दोस्तों। चलिए ऐसे ही साथ दीजिए, 7 बजे के बाद भूलिएगा नहीं दिलों की आवाज़ प्रोग्राम आप सुनेंगे।

यह नवरात्रों माँ दुर्गा की कृपा आप सभी पर बरसे, आपका जीवन सुखमय एवं सफलताओं से भरपूर रहे। आप सभी को एमबीसी की पूरी टीम की ओर से नवरात्र की पावन मंगल कामनाएं। एमबीसी विशेस यू ऑल अ पायस नवरात्रि।

0: दिलों की आवाज, दिलों की आवाज, दिलों की आवाज।
1: रात के 7 बज चुके हैं। नमस्कार, छोटा हुआ एमबीसी रेडियो पर आप सबका स्वागत है। जी हाँ, और प्यार भरा नमस्कार आप सबको। जी हाँ, अगर आपने रेडियो को ऑन किया है अभी अभी, याद दिला दें, आप सुन रहे हैं RM Free Radio, रेडियो मनोरंजन। और

की आवाज कार्यक्रम हम शुरू करने जा रहे हैं। सबसे पहले चलिए आप सभी को नवरात्रि की ढेर सारी हार्दिक शुभकामनाएं। मां दुर्गा आप सबके जीवन में सुख शांति समृद्धि और खुशियां लेकर आए और मां जगदम्बा की कृपा आप सब पर बनी रहे, हर घर में प्रेम और सद्भाव का वास हो। तो चलिए नवरात्रि के ये 9 दिन हमें माँ दुर्गा की शक्ति भक्ति और सहस का संदेश देते हैं और मैं उषा कौर यहाँ पर साथ निभाऊंगी। 9 बजे तक आप भी साथ निभाइएगा। नंबर है 4028070402870। आप हमें मैसेजेस कर सकते हैं 5250620। चलिए हमें आपका इंतज़ार है, साथ दीजिएगा 9 बजे तक।

0: You're listening to RM3 Radio Manoranjan.
1: क्या हुआ?
2: वो तो
1: क्यूट है ना?
2: अरे पहलवान है,
1: पर तुमसे प्यार करती है।
2: हो नहीं सकता।
1: और तुम्हें भी उससे प्यार करना चाहिए।
2: हो नहीं सकता।
1: वो तुम्हें पकड़ने यही आ रही है।
2: ये हो नहीं सकता।
3: होने को तो कुछ भी हो सकता है मेरे श्याम।

0: दिलों की आवाज, दिलों की आवाज, दिलों की आवाज।
1: 7:25 हुए हैं और यहाँ पर आप सुन रहे हैं दिलों की आवाज़ प्रोग्राम। जी हाँ दोस्तों, चलिए बढ़ते हैं आगे। और यहाँ पर सुदेवी जी जो हमें सुन रही हैं फ्रॉम बाक्वा, वो गाना मांग रही हैं अपने लिए और ख़ासकर दीदी सुनीता कुशल फैमिली और ललिता दीदी फ्रॉम त्रियोले और शोभा दीदी देवीना मालेंगा की कृषय कृष्णी प्रणीता रामलगन फैमिली के लिए और हमारे तमाम सुनने वालों के लिए। शबनम फिल्म से लिया गया अनुराधा पोडवाल और एसपी बाला सुब्रमण्यम की आवाज़ों में।

0: दिलों की आवाज, दिलों की आवाज, दिलों
1: की आवाज। 7:37 हुए हैं, दिलों की आवाज। जी हाँ, हम दिल की बातें करेंगे यहाँ पर। क्या आपको याद है वो पहली मुलाकात, वो पहली नजर, वो हल्की सी मुस्कुराहट और दिल में उठने वाली अनजानी सी लहर? कभी कभी एक अनजान चेहरे भी अपना सा लगने लगता है, बिना कुछ कहे आंखें बहुत कुछ कह जाती है। और यहाँ पर हमें सुन रहे हैं रोशनी जी। जी हाँ, आप रहती हैं बोबा से और साथ दे रहे हैं। साथ देने के लिए हम आपको धन्यवाद कहते हैं। और आपको याद दिला दे, दिलों की आवाज़ प्रोग्राम ऑन RM फ्री रेडियो। और यहाँ पर हम लाइव टिकटॉक भी कर रहे हैं, अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो ज़रूर आप ज्वाइन कर सकते हैं। और यहाँ पर हमें देख रहे हैं, चलिए उनका नाम हम लेंगे, लीली, नमस्ते टू यू। वसंती जी हेलो, अरविंद हेलो बोल रहा है, हेलो टू यू। और नाज, और साथ में शंकर देवयानी, चलिए नमस्कार आपको और बहुत ही सुंदर गाने, थैंक यू सो मच। प्लेलिस्ट जो हमने बनाया है खासकर आप लोगों के नाम। और सालिम उमंगा नमस्ते, और बूबा जो है, रेखा रामा नमस्कार आपको। सबरीना जो है गाना मांग रही हैं, और अपने हस्बैंड अभिषेक और बेटे जो है अभिनव और अरविंद गाना मांग रहे हैं अपने लिए। चलिए, ये फरमाइशों का प्रोग्राम नहीं है लेकिन डेडिकेशन हम ज़रूर करेंगे। 80s और 90s के खूबसूरत और पॉपुलर गाने नसीब फिल्म से लिया गया लता जी की आवाज़ में।

0: दिलों की आवाज की आवाज दिलों की आवाज।
1: चलिए दिलों की आवाज प्रोग्राम को हम जारी रखते हैं। कहते हैं सच्चा प्यार सिर्फ मोहब्बत बातें करने या बार-बार अपने प्यार का इजहार करने का नाम नहीं है दोस्तों। सच्चा प्यार वो है जहां आपको समझा जाए, आपकी इज्जत की जाए और

आप अपने दिल की बात बिना डरे कह सके। चलिए अगर ऐसे इंसान हैं आपके ज़िंदगी में जहां आप बात करते हैं और वो भी बिना डरे, तो उसको संभाल कर रखें। और यहां पर हमें सुन रहे हैं रॉय राजपूत फ्रॉम यूके, धन्यवाद साथ देने के लिए। अंकुश है, नमस्ते आपको। मूसा विशाल बिहारी जी और साथ में आकाश चेतन मनसुख गाना मांग रहे हैं अपने परिवार के लिए, मनसुख परिवार जो रहती हैं बॉम्बू। सारा खान, नमस्ते आपको। सरलो आपके लिए। और दिनेश गोपी, नमस्कार। आफिजा, हेलो। और साथ में यहाँ पर कृष्णा जो रहते हैं फिजी में, जी हाँ वो हमें सुन रहे हैं। और परमेश जो है गाना मांग रहे हैं अपनी बीवी बीवी कविता सोनाटन के लिए। और चलिए करिश्मा जो रहती है वाले दे प्रेट, गाना मांग रही हैं अपने लिए। और रोहन और साथ में नेली के नाम, रोहन आपके लिए गाना हम चलाएंगे ज़रूर। और कैलेश कैलाश जो रहते हैं बेलिया, और रोहन जो है अपनी बेटी वाहिनी तिलक के लिए गाना मांग रहे हैं। चलिए 90s का ये खूबसूरत गोल्डन सॉन्ग सुनिए, दस्तक फिल्म से लिया गया उदित नारायण की आवाज में।

0: दिलों की आवाज की आवाज
1: की आवाज 7:54 हुए हैं और यहां पर लक्ष्मी रामजीतन जी जो रहती है बेलिया और वो गाना मांग रही है अपने बच्चों के लिए केशव कुशल और माधव के लिए और श्रद्धा लखनऊ नमस्ते टू यू लंदन से हमें सुन रही है फारा हेलो टू यू भुइनो रामजीन गाना जाएगा आपके नाम सामीरा जो है नमस्ते टू यू रवीना बेला हाय और साथ में निर्मल कुमार यादव नमस्कार आपको और साथ में दे रही है पूनम जी गाना वो मांग रही है अपनी माताजी के लिए और माताजी जो रहती हैं केवल नगर चलिए धन्यवाद मिदुन आपको हम कैसे भूल सकते हैं और मामा का नाम है धर्मावती चलिए पूनम जी बहुत धन्यवाद और यहाँ पर कृष्णा रोमांटिक गाना मांग रहे हैं सभी गाना तो रोमांटिक ही है ऐसे रोमांटिक गाने आप लोगों के नाम हमने तैयार किया है 80s और 90s और कृष्णा जी हाँ और माधुरी जी नमस्ते टू यू अच्छा कृष्णा किसी स्पेशल के लिए गाना मांग रहे हैं चलिए धन्यवाद आपको वेदना के लिए चलिए नवरात्रि के इस पावन अवसर पर ये गाना हम चला रहे हैं जुबिन नौटियाल की आवाज़ में

दिलों की आवाज प्रोग्राम और इस खूबसूरत सिलसिला को हम जारी रखते हैं दोस्तों। चलिए माँ शेरावाली आप सब की कृपा आप सब पर हमेशा बनी रहे। और यहाँ पर सुन रही है लक्ष्मी राम जीतन, चलिए थैंक यू, आपने बोल दिया है, धन्यवाद। और वेदना, जी हाँ वेदना का नाम भी हमने ले लिया, जे वीना नमस्ते टू यू। और जे के खतिवाड़ा नमस्कार, आप हैं फ्रॉम नेपाल। और वरना और शालानिया जो रहते हैं कनाडा से हमें सुन रहे हैं, धन्यवाद और साथ दे रही है। सन नमस्ते टू यू। और नीता जो है नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं उनके सभी दोस्तों के लिए। और टीना, वरुणा, दिव्या, रिंटा और रामा, आपका नाम हमने ले लिया है। और चलिए बढ़ते हैं आगे। कहते हैं ना, जहां भरोसा हो वहां हर पल सफाई देने की ज़रूरत नहीं होती, जहां सम्मान हो वहां किसी को अपनी मर्ज़ी के मुताबिक बदलने की कोशिश नहीं होती। मोहब्बत में थोड़ी नोक झोंक हो सकती है, लेकिन अपमान, डर और हर वक्त शक को प्यार का नाम नहीं देना चाहिए। सच्चा प्यार आपकी ज़िंदगी में सुकून लाता है, आपकी पहचान नहीं छीनता। अलका याग्निक और उदित नारायण की आवाज़ों में चले बढ़ते हैं आगे। दिलों की आवाज़ प्रोग्राम, रात के 8 बज चुके हैं, आरएम फ्री रेडियो पर।

0: दिलों की आवाज़।
1: 8:10 हुए हैं। चलिए यहाँ पर आरती सागर जो हमें सुन रही है और गाना वो मांग रही है पूरन फैमिली और मोगा फैमिली के लिए। रणधीर आपको, एंटीकोट आपके लिए गाना, और साथ में नीलिमा, नाइस प्रोग्राम, बहुत धन्यवाद आपको। और साथ में दे रही है अमृता जी, नमस्ते टू यू। अमीना नमस्कार। और आप हैं स्टीवन, बिश्वानी जुमन जी गाना वो मांग रही है अपने लिए। संजना और सिहा कुहांस, नमस्ते टू यू, गुड इवनिंग। टाइलवी नमस्कार, जय माता दी। और जया लक्ष्मी जो हमें सुन रही है फ्रॉम शमागल। और गाना सान के लिए, ज़रूर सान आपके लिए हम गाना चलाएंगे। और आप हैं वीमी, नमस्ते टू यू। और पूनम नीलम श्रीपल गाना मांग रही है एक स्पेशल पर्सन के लिए। स्पेशल पर्सन अगर आप नाम देते तो बहुत अच्छा लगता। रब ने बना दी जोरी, गाना हम नहीं चला पाएंगे क्योंकि प्लेलिस्ट बना लिया है ऑलरेडी। और शावी नमस्कार, उनको आज धन्यवाद आपको। और एक खास इंसान के लिए जो इस प्रोग्राम को कभी मिस नहीं करता है, आपके नाम ये गाना जाएगा। और साथ में ये गाना नाविद के लिए और हमारे तमाम सुनने वालों के लिए।

0: दिलों की आवाज, दिलों की आवाज, दिलों की आवाज।
1: चले बढ़ते हैं आगे दोस्तों, आप सुन रहे हैं दिलों की आवाज ऑन ऑरेंज फ्री रेडियो। 8:18 हुए हैं और यहाँ पर हमें सुन रही है अनुष्का। जी हाँ, अनुष्का गाना वो मांग रही है अपने हस्बैंड कविन के लिए और नया अंदाज कराओके लिमिटेड। जी हाँ, केशव ओबिलक, चलिए आपके लिए हम अगला गाना चलाएंगे। और कमला जी, थैंक यू सो मच, हमारी प्यारी कमला। और सिम सिम जो है, नमस्ते, नमस्ते टू यू। और शैलेंद्र गिल, नमस्ते टू यू ब्लू स्काई, नमस्ते दीदी, नमस्ते आपको। और ऐसे ही आप साथ देते रहिए, ऐसे मुस्कुराते रहिए हमारे साथ हमेशा। हीना जस्मिन, जी हाँ, वो गाना डेडिकेट करना चाहती है लक्षणा, दीपक, रजवीर, शिक्षा और उनकी मामा वीना इसेरबिया। चलो, होप के हमने ये आपका नाम सही लिया। और दिया बिहारी, नमस्ते टू यू। चलिए 90s का ये खूबसूरत गीत सुनते हैं सोनू निगम की आवाज़ में।

यह नवरात्र माँ दुर्गा की कृपा आप सभी पर बरसे, आपका जीवन सुखमय एवं सफलताओं से भरपूर रहे। आप सभी को MBC की पूरी टीम की ओर से नवरात्र की पावन मंगल कामनाएं। MBC wishes you all a pious navratri।

0: दिलों की आवाज की
1: आवाज चले दिलों की आवाज प्रोग्राम यहां पर आप सुन रहे हैं रेडियो मनोरंजन पर 8:27 हुए हैं यहां पर और दिलीप कुमार साहब कैसे हैं आप आपके लिए गाना और साथ में है अशफाक के नाम चलिए गाना जो है सैयारा हमें नहीं लगता है कि हम चला पाएंगे ये गाना लेकिन फिर भी अशफाक के लिए जाएगा अगला गाना और साथ में चंद्रानी जी जो हमें सुन रही हैं चंद्रानी काहूपानन जी आप रहती हैं पुदोदो धन्यवाद पुदोदो विलाज जस्ट जॉइन आवर प्रोग्राम धन्यवाद

टू यू। और आप हैं रजनी जी, रेशमा, मधु और मिकाएलो, अंजलो, आपके लिए हमारी प्यारे अंशु, अंशु बेटा के लिए और दीक्षा, प्यारी दीक्षा, नमस्ते दीक्षा। और रंभा जी जो हमें सुन रही हैं, हैप्पी नवरात्रि टू यू। जी हाँ, साथ में गाना जाएगा आपके लिए और पीटिया फैमिली के लिए जो रहते हैं विल्नुआ। रुवेन, जी हाँ रुवेन, गाना जाएगा आपके लिए। किरण जी नमस्ते टू यू। मीनाक्षी जी फ्रॉम फ्लैक। और उन सभी लोगों के लिए जो नवरात्रि मना रहे हैं, नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं आपको।

दिल की धड़कन में तुम हो, सांसों में तुम हो, और यहाँ पर हमें सुन रहे हैं दीनू मोहिंदी. दीनू नमस्ते टू यू. और हरुण जी, तिलक कुमार आप हैं, निर्मला मेघनाथ शुभ नवरात्रि आपको भी, गौरंगा हरे कृष्णा और शैला जी हाँ धन्यवाद साथ देने के लिए. हरिचंद चलिए यहाँ पर शावानिया गाना मांग रही है अपनी मामा वीना, भाई विशान और बहन वर्षा जो आइलैंड में है.

ये जो हमें सुन रही है वेश के लिए सारा खान गाना वो मांग रही है अपने अपनी भाई और भाभी के लिए आज उनके शादी की सालगिरह है।

0: दिलों की आवाज की आवाज की
1: आवाज। चलिए कुछ ही समय में ये कार्यक्रम समाप्त होने को है। जी हाँ, 9 बजे तक हम आपका साथ देंगे और आप लोग भी साथ दे रहे हैं। चलिए बढ़ते हैं आगे और यहाँ पर केव जो है गाना मांग रहे हैं बीवी अनुष्का के लिए, निज़ाम ओजिया और आप हैं मीला गामा। धन्यवाद वेश। हरीश चुनी, नमस्ते टू यू। अनिल टिरबो, आपके नाम गाना जाएगा। अक्षय जो है हमें सुन रहे हैं, धन्यवाद। फिया, ऐसे ही सुनते जाइए, हमेशा रेडियो के साथ जुड़े रहिए और खूबसूरत गानों का मज़ा लीजिए। और यहाँ पर कोई कह रहा है द प्राइड यू टेक इन योर वर्क इज ट्रूली इंस्पायरिंग। धन्यवाद। ऐसी ऐसी बातों सुनकर हम बहुत ही खुश हो जाते हैं। और आप गाना मांग रहे हैं दाहन श्वेता रविश प्रीशा लव शाह आपादू फैमिली जो रहते हैं रोशनो। चलिए विजयपत फिल्म से दिया गया कुमार सानू और अर्का याग्निक की आवाज़ों में, रोमांटिक गाना है ये।

0: दिलों की आवाज,
1: चलिए आज 11 अक्टूबर 2026 और आज महान कलाकार हम उनको कैसे भूल सकते हैं, महान कलाकार जो है अमिताभ बच्चन साहब का जन्मदिन है, तो उनको हम ढेर सारा प्यार और आशीर्वाद देते हैं उनके सभी चाहने वालों की ओर से

जी हाँ, और यहाँ पर साथ में आप तो जानते होंगे हमारा जो कॉलीग है रोशन जी, रोशन हरनोम, जो अंताक्षरी प्रोग्राम भी प्रस्तुत करते हैं और खेल खिलाड़ी प्रोग्राम हर सैटरडे को, आज उनका जन्मदिन है तो हम उनको कैसे भूल सकते हैं। जी हाँ, और ढेर सारा प्यार और आशीर्वाद हमारी ओर से आपकी प्यारी पत्नी मनीषा की तरफ से, बेटे जयशल और ऋषल की ओर से, और सभी हरनम परिवार की, और भाई जी आपको ढेर सारा प्यार और आशीर्वाद जन्मदिन के मौके पर, और ये गाना चल पड़ा आपके लिए।

तो प्यारे दोस्तों इसी के साथ आज का प्रोग्राम यहीं पर समाप्त हो चला। आपने साथ दिया बहुत धन्यवाद। ऐसे ही साथ दीजिए, हंसते मुस्कुराते रहिए। उषा को दीजिए अनुमति। नमस्कार, आदाब, शुभ रात्रि।

0: 819 किलोहर्ट्ज़ ये है रेडियो मॉरिशस। रेडियो मॉरिशस।
1: हे काल रात्रि हे कल्याणी, तेरा जोड़ धरा पर कोई नहीं, मेरी माँ के बराबर कोई नहीं।
2: यह नवरात्र माँ दुर्गा की कृपा आप सभी पर बरसे, आपका जीवन सुखमय एवं सफलताओं से भरपूर रहे। आप सभी को एमबीसी की पूरी टीम की ओर से नवरात्र की पावन मंगल कामनाएं। एमबीसी विशेस यू ऑल अ पायस नवरात्रि।

रात के 9:10 हुए हैं। श्रोताओ जी, आप सुन रहे हैं रेडियो मॉरिशस और रेडियो मनोरंजन, और अभी आप सुन रहे हैं नवरात्रि पर विशेष कार्यक्रम। आप सभी श्रोताओं का स्वागत है इस पवित्र और मंगलमय कार्यक्रम में, जहां आज हम बात करेंगे भक्ति की, आस्था की, शक्ति की और उस विश्वास की जो हमारे जीवन में नई रोशनी लेकर आता है। मैं उषा कौर आप लोगों के साथ, जी हां, 10 बजे तक आप सुनेंगे ये विशेष कार्यक्रम। मेरी ओर से आप सभी को नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएँ। माँ दुर्गा आपके घर में सुख, शांति और समृद्धि बनाए रखे, हर परिवार में प्रेम ना रहे, हर चेहरे पर मुस्कान रहे और हर मन में नई उम्मीद जागती रहे। नवरात्रि केवल पूजा और व्रत का पर्व नहीं है श्रोताओं, ये अपने अंदर झांकने का, अपनी कमियों को समझने का और अपने जीवन को बेहतर बनाने का भी समय है। जिस तरह हम अपने घर में दीप जलाते हैं, उसी तरह हमें अपने मन में भी दया, प्रेम, सत्य और अच्छे कर्मों का दीप जलाना चाहिए। तो आइए आज के इस पहले दिन की शुरुआत करते हैं माँ शैलपुत्री के स्मरण के साथ। माता रानी सबका कल्याण करे।

जय श्रोताओं, नवरात्रि के नौ दिन केवल पूजा और उपासना के दिन नहीं है, बल्कि अपने मन को समझने, अपने विचारों को पवित्र बनाने और अपने अंदर छिपी शक्ति को पहचाने का भी अवसर है। माँ दुर्गा के नौ स्वरूप हमें जीवन की अलग अलग सीख देते हैं। कहीं हमें साहस मिलता है, कहीं धैर्य, कहीं ज्ञान और कहीं प्रेम और करुणा का संदेश। और आज नवरात्रि के पहले दिन है, हम वंदना करेंगे माँ शैलपुत्री की। माँ शैलपुत्री, जिन्हें पर्वतराज हिमालय की पुत्री कहा जाता है, नव दुर्गा का प्रथम स्वरूप है। उनकी पूजा के साथ नवरात्रि की आराधना का आरंभ होता है। आज के इस कार्यक्रम में हम जानेंगे माँ शैलपुत्री कौन है, उनकी कथा क्या है, उनकी पूजा का क्या महत्व है और उनके जीवन से हम क्या सीख सकते हैं। तो अपने मन को भक्ति से भर लीजिए, अपनी चिंताओं को कुछ पल के लिए दूर रखिए और माँ का स्मरण करते हुए हमारे साथ

बनिए और भूलिएगा नहीं कि माँ जो है हमेशा अपने बच्चों का ख्याल रखता है रखती है और उनकी कृपा अपने बच्चों पर सदैव रहती है।

जय श्रोताओ, नवरात्र के पहले दिन जिस देवी की आराधना की जाती है उनका नाम है माँ शैलपुत्री। शैल का अर्थ होता है पर्वत और पुत्री का अर्थ होता है बेटी। इस तरह शैलपुत्री का अर्थ है पर्वत की पुत्री। माँ शैलपुत्री को हिमालय की पुत्री माना जाता है। उनका स्वरूप बहुत ही शांत, दिव्य और शक्तिशाली है। उनके एक हाथ में त्रिशूल और दूसरे हाथ में कमल होता है। वो वृषभ यानी बैल पर सवार होती है। माँ का त्रिशूल हमें बुराई के सामने डट कर खड़े रहने की प्रेरणा देता है, जबकि उनके हाथ का कमल पवित्रता और सुंदरता का प्रतीक है। उनका वाहन हमें धैर्य और स्थिरता का संदेश देता है और जीवन में कितनी भी परेशानियां क्यों ना आए, हमें अपने लक्ष्य से भटकना नहीं चाहिए। धार्मिक मान्यता के अनुसार माँ शैलपुत्री का संबंध माता सती के पूर्ण जन्म से भी है। माता सती के ने हिमालय के घर पुत्री के रूप में जन्म

लिया और शैल पुत्री कहलाई उनकी पूजा हमें याद दिलाती है कि हर नई शुरुआत के लिए मजबूत नींव जरूरी होती है जिस तरह एक पर्वत अपनी जगह पर अटल रहता है उसी तरह हमें भी अपने अच्छे संस्कार अपने सच्चाई और अपने विश्वास पर अटल रहना चाहिए आज के दिन आइए हम सब अपने मन में एक संकल्प लें हम अपने जीवन में सच्चाई का साथ देंगे दूसरों का सम्मान करेंगे और कठिनाई समय में मुश्किल समय में हम भी हिम्मत नहीं हारेंगे

प्यारे श्रोताओं, अब समय है माँ शैलपुत्री की उस पवित्र कथा को जाने का जिसमें श्रद्धा, सम्मान और अपने विश्वास पर अटल रहने का संदेश छिपा है। धार्मिक कथाओं के अनुसार माँ दुर्गा ने अपने पहले जन्म में माता सती के रूप में जन्म लिया था। माता सती के पिता राजा दक्ष थे और उनका विवाह भगवान शिव से हुआ था। एक बार राजा दक्ष ने एक बड़े यज्ञ का आयोजन किया। उन्होंने कई देवताओं को आमंत्रित किया, लेकिन भगवान शिव को आमंत्रित नहीं किया। माता सती को जब इस बात का पता चला तो वो अपने पिता के घर गए। वहाँ भगवान शिव के प्रति अपमान बातें सुनकर माता सती को बहुत दुख हुआ। इस प्रसंग का वर्णन हिंदू धार्मिक कथाओं में मिलता है। इसके बाद माता सती ने अपना वो शरीर त्याग दिया। अगले जन्म में उन्होंने हिमालय के घर पुत्री के रूप में जन्म लिया और माँ शैलपुत्री के नाम से प्रसिद्ध हुई। इस कथा में एक गहरा आध्यात्मिक संदेश है। जीवन में सम्मान, सच्चाई और अपने मूल्यों का बहुत महत्व होता है, लेकिन श्रोताओं, इस कथा को हम अपने रोज़मर्रा के जीवन से कैसे जोड़ सकते हैं? कभी कभी हमें भी ऐसी परिस्थितियों का सामना करना पड़ता है जब हमारी बात को समझा नहीं जाता, हमारी जो भावनाओं हैं का सम्मान नहीं होता है, या हमें अपने ही लोगों से निराशा मिलती है। ऐसे समय में हमें अपने मन को शांत रखना चाहिए, समझदारी से काम लेना चाहिए और अपने आत्मसम्मान को पहचाना चाहिए। माँ शैलपुत्री का पर्वत जैसे स्वरूप हमें याद दिलाता है कि सच्चाई और अच्छे संस्कार हमारे जीवन की मजबूत नींव है। आइए माँ के चरणों में प्रार्थना करें कि वो हमें हर परिस्थिति में सही रास्ता चुनने की बुद्धि और कठिन समय में धैर्य प्रदान करें।

9:52 हुए हैं श्रोताओं मेरे, यहाँ अब आ गया है समय आज के इस भक्तिमय कार्यक्रम को विराम देने का। आज हमने माँ शैलपुत्री की महिमा को जाना, उनकी कथा सुनी और उनके स्वरूप से मिलने वाली सीख को अपने जीवन से जोड़ने का प्रयास किया। नवरात्रि का पहला दिन हमें एक नई शुरुआत का संदेश देता है। आइए हम अपने मन से बुरी सोच, ईर्ष्या और नफरत को दूर करने का प्रयास करें। अपने जीवन में प्रेम, विश्वास, दया और अच्छे कर्मों को जगा दें। माँ शैलपुत्री से प्रार्थना है कि वो आप सभी के घरों में सुख शांति बनाए रखें, आपके जीवन में नई उम्मीदें जगाएं और आपको हर मुश्किल का सामना करने का साहस दें। मैं आपकी अपनी उषा कौर आपसे विदा लेती हूँ और अपने विश्वास को पर्वत की तरह मजबूत रखिए, अपने मन को कमल की तरह पवित्र रखिए और अपने व्यवहार में प्रेम बनाए रखिए। आप सभी को नवरात्रि की एक बार फिर हार्दिक

0: भोजपुरी तड़का।
1: रात के 10:02 हो गए बा श्रोता लोग, नवरात्रि के शुभ अवसर पर आशा करत है कि तो लोग भक्ति एवं भाव गीत के आनंद उठा ले हई बजा। चला तो हर खातिन भोजपुरी तड़का प्रोग्राम के समय हो गए बाते और इस समय तो हर मन पसंद गीतवन जे मन बा सुने के तैर्य नहीं कर और नंबर वा घुमा हुआ 402 80 85

0: भोजपुरी तड़का
1: रात के 10 बजकर 12 मिनट हो गल बार श्रोता लोग आज से दुर्गा पूजन आरंभ होल और सगरो वातावरण शुद्ध और पवित्र बा सब लोगन भक्ति भाव से माता रानी के आराधना करत हवन त हमर साथ ऊंची आवाज में बोला जय माता दी और वो अपन गाना के मांग भी कर जा फटाफट

0: भोजपुरी तड़का।
1: रात के 10:26 हो गल बा और चला साथी लोगन तो हर से विनम्र आग्रह बाते कि पानी के जाया नहीं करा जा। काहे कि मॉरिशस सूखा के सामना करा था और ही हमनी के एक जोत होके एक ई समस्या जोन है एकर सुलझाए के चाहिए। तो चला अगला गीत संगीता जी खातिर जोन हमनी के सुनता क्यों पिप से साथ देने खातिर धन्यवाद।

0: भोजपुरी तड़का
1: रात के 11:45 छोटा लोग भोजपुरी गीतवन तक खूबे दिल के बहलावेला सब प्रकार के गाना है भोजपुरी क्षेत्र में हमने के देसी कलाकार लोगन तब भर सक प्रयास करेलन अपन कला के उजागर करे के हमियों के परी वो लोग के साथ दे के हौसला बढ़ाई के भोजपुरी के और प्रतिष्ठित करे के मंजिल तनी दूर बाते पर संभव तन को नहीं जहाँ चाह वहाँ रा तो चला अगला गीत सुना ललिता पुनीत के गावल गीत और ये गाना देव जी खातिर जन रही लामे बग और ये बखत हमने के सुना था गाना मांगा तवन जा अपने अपन खातिर और अपने दोस्तों खातिर

श्रोता लोग इराहल तोहर खातिर भोजपुरी तरका के कार्यक्रम 11 बजे रात्रि के होता और तोहरा शुभ रात्रि बोलत हैं। काल से एगो नया सप्ताह शुरू होता तब तोहरा तोहर लिए मंगलमय हो, ऐसे ईश्वर से विनती बाती। नवरात्रि तोरों के अभिनंदन। जय माता दी, जय माँ शैलपुत्री जी।

0: On the hour, every hour. Radio Marches.
1: सुनहरे पल रेडियो मॉरिशस के साथ। जिंदगी के अनमोल लम्हे रेडियो मॉरिशस के साथ। श्रोताओं प्रणाम, नमस्ते। रात के 11 बजे हैं, सुनहरे पल में आप सबका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ पूनम। आज हम बात करेंगे गीतों के साथ हमारी उन छोटी आदतों की जिनमें कभी संगीत शामिल था और आज भी शामिल है। काम करते हुए गाना गाना या पसंद का गीत सुनकर सब कुछ भूल जाए।

कभी दूसरे कमरे में जाते हुए रेडियो पर पसंद का गीत शुरू हो जाता था तो कदम वहीं रुक जाते थे, सोचते पहले ये सुन लो, काम फिर कर लूँगा। आज भी कोई गीत आपको ऐसे रोक लेता है क्या? सुनिए, कभी कहीं जाने की जल्दी कहाँ है, कहीं मत जाइए, हमारे साथ रहिए।

0: घर में कोई गीत गुनगुनाता था और बीच में अपने ही बोल हम जोड़ देते थे। सुनने वाला कहता, अरे ऐसी नहीं है। फिर दोनों हंस पड़ते, गीत सही गाया या नहीं वही हंसी याद रह गई। शायद आपके घर में भी कोई ऐसा ही गीत था जो आपके किसी अपने को बहुत पसंद था, आज गाइए हम।
1: रेडियो मॉरिशस
2: 819 किलोहर्ट्ज़ पर, ये है रेडियो मॉरिशस।
1: रेडियो मॉरिशस।
2: रेडियो मॉरिशस।

0: 819 kilohertz. This is
1: Radio Marches. Radio Marches.
2: आपको वो दिन याद है, कभी कोई गीत इतना पसंद आता कि उसे याद करने का मन होता, अगली बार रेडियो पर जैसे ही बजेगा ना, मैं सामने खड़ा होऊंगा। तो बड़े से ध्यान से सुनते, पहला मुखड़ा याद हुआ, फिर बाकी बोल, और इतनी छोटी सी खुशी किसी को

सुनानी ही होती थी। कई बार हम कागज़ पे लिख लेते थे और लिखते लिखते बस एहसास होता था कितना अच्छा ये गाना है, इसके बोल कितने प्यारे हैं, बस वही दिन तो याद रहेंगे, वही तो सुनहरे पल हैं।

घर की जो औरतें हुआ करती थी कपड़े तह करते हुए या रसोई में कुछ बनाते हुए अपने आप कोई गीत होठों पे आ जाता था, फिर काम चलना शुरू हो जाता था, गाना एक तरफ बजता रहता था, मधुर मधुर संगीत होता था और घर का माहौल बहुत ही प्यारा हो जाता था। आज रात काम पूरे हो गए होंगे आप सबके भी, अब बस थोड़ा सा आराम कीजिए, साथ बैठिए, गुनगुनाइए, गीत सुनिए, आराम से बैठिए, थोड़ी सी ठंडी हवा

कभी कभी कहते हैं ज़िंदगी की बहुत सारी उलझनें हो जाती हैं पूरे दिन में, तो हम तो कहेंगे उलझनों से बाहर निकलो, आराम से ये गाने सुनो। कोई अगर ड्राइव करते हुए इस प्रोग्राम सुन रहा है या घर में कहीं किसी कोने में, और कोई अपने किसी रात की ड्यूटी पर है, तो हम तो यही कहेंगे अपनी ड्यूटी निभाइए, गाने सुनते रहिए। रेडियो मॉरीशस इसीलिए आपके साथ रहता है कि आपका मन लगा रहे, आपका दिन अच्छा जाए, क्योंकि आपको जब हमारा दिन होगा तब आपकी समझ लीजिए रात होगी। तो हम तो यही कहेंगे आराम से रेस्ट कीजिएगा तब, पर अभी बिल्कुल अलर्ट होकर आप आराम से अपने गाने सुनिए और साथ में बढ़ते रहिए, जिंदगी को चलाते रहिए, खूबसूरत पल आपके हैं।

0: श्रोताओं, आज गीतों के साथ कुछ छोटी छोटी आदतें याद की जिनसे हमारे दिन अच्छे लगते थे। आपका साथ अच्छा लगा। अगले शनिवार रात 11 बजे फिर मिलेंगे सुनहरे पलों में। मैं थी आपके साथ पूनम, अब आपसे लेती हूँ विदा। आपकी रात आराम से बीते।
1: रेडियो मॉरिशस
2: 819 किलोहर्ट्ज़ पर, ये है रेडियो मॉरिशस।
1: रेडियो मॉरिशस,
2: रेडियो मॉरिशस,
1: रेडियो मॉरिशस
2: 819 किलोहर्ट्ज़ पर, ये है रेडियो मॉरिशस।
1: रेडियो मॉरिशस,
2: रेडियो

0: मेरी तो ट्रेजेडी यही है, मैंने जिससे भी प्यार किया सबको खो दिया, मां बाप भाई यहां तक कि।
1: तुम बहुत लकी हो शेखर कि तुम्हारे पास कुछ खोने के लिए था। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिन्होंने कुछ पाया ही नहीं जो खो सके। मेरी आंखों में देखो शेखर।
0: डरता हूं कहीं फिर से प्यार ना करने लगूं और दोबारा चोट खाने की हिम्मत।
1: मैं वादा करती हूँ शेखर कि आज के बाद तुम्हारा दिल कभी नहीं टूटेगा। I promise you that I will never ever hurt you.

हैं।